एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय

0: पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं। चिंतन। मानव जीवन भगवत कृपा से प्राप्त होता है। लाखों योनियों में भटकने के बाद प्राणी अंत में भगवत अनुग्रह से मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, अपना कल्याण करना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। इसलिए अहम का त्याग कर सब में प्रभु को मानकर सद्मार्ग पर चलना चाहिए।

जो मनुष्य दुखी प्राणियों के दुखों को दूर करने वाला है, वास्तव में वही इस संसार में पुण्यात्मा है।

मनुष्य को उस कल्याणकारी और निष्पाप मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसमें मनुष्य सभी दोष भावनाओं का परित्याग कर देता है।

शिव आदि देव हैं, वे महादेव हैं। सृष्टि के आदिकाल में जब सर्वत्र अंधकार था, न दिन न रात्रि, न सत न असत, तब केवल निर्विकार शिव ही थे। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव ओंकार है और ब्रह्म भी शिव ही है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें आज हम बात करेंगे विश्व प्रवासी दिवस पर। 7:40 पर लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत आपको सुनवाए जाएंगे सुबह 9:00।

आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:18 पर, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार, हिंदी में समाचार, सुबह 7:00, शाम 7:00 और सुबह 8:08 समाचार प्रभात। अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर शाम 9:00 और 8:15 पर सुबह। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। छह बजकर 55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: टीएमसी इति दलस्य पञ्चदश वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेती शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेती भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कौन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपं ईरान देशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्ति इति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्त राष्ट्र संघस्य सदस्य राष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister yesterday. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has majority. Meanwhile, the IUML, headed by Professor Kadir Muhyiddin, has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprising move, the meanwhile AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamaraj, the lone MLA elected from Mannarkudi to make AIADMK General Secretary E. Palaniswamy as the new Chief Minister. External

श्रोतो नमस्कार। सुप्रभात और सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त नर्मदा शर्मा।

तो श्रोताओ, किसी के आने पर दिल का मचलना तो जायज़ है, और ख़ास करके जब कोई बहुत दिनों के बाद घर आने वाला हो तो ये खुशी और भी बढ़ जाती है। या फिर बहुत दूर से आने वाला हो, जैसे कि विदेश से आने वाला हो, तो ये धड़कन का बढ़ना तो बिल्कुल जायज़ है। तो आज हम बात करेंगे, आज है प्रवासी भारतीय दिवस। भारत में हर साल 9 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है, जो सबसे बड़े प्रवासी माने जाते हैं। ये दिवस विदेशी भारतीय समुदाय के भारत के विकास में योगदान को मान्यता देता है और सरकार के साथ उनके जुड़ाव को मजबूत करता है। प्रवासी भारतीयों यानी NRI की उपलब्धियों का जश्न मनाना और उन्हें देश से जोड़ना, ये उद्देश्य है इस दिन को मनाने का। ये आयोजन 2003 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। ये भारतीय प्रवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ता है, भारत की प्रगति में उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो एक गीत सुनते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर इसके बाद करेंगे और भी बातें।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: स्वागत है आपका एक बार फिर से सुप्रभात कार्यक्रम में।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस है, जिसे रविंद्र जयंती के रूप में जाना जाता है। हर साल मई महीने के आमतौर पर 7 से 9 मई के बीच ये दिन मनाया जाता है और बंगाली कैलेंडर के अनुसार इसे वैशाख मास के 25वें दिन ये दिन मनाया जाता है। इस बार 165वीं जयंती है। ये दिन भारत के महान साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता, कवि और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देता है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें 1913 में उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगणमन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा था। साथ ही शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रविंद्र संगीत, उनके द्वारा रचित गीत और नाटकों का आयोजन किया जाता है।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। श्रोताओं, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। एक वैश्विक अभियान है जो साल में दो बार मनाया जाता है, यानी मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रवास के रास्तों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 9 मई 2026 और यानी आज और 10 अक्टूबर 2026 को ये दिन मनाया जा रहा है। हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन मायने रखता है, ये इस वर्ष का इसका थीम है। इस वर्ष इस दिन को मनाने का महत्व है कि ये पक्षियों के संरक्षण के लिए सामुदायिक विज्ञान की भूमिका पर जोर देता है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण कार्यक्रमों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पक्षियों के प्रवास के चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है और इसीलिए ये दो बार मनाया जाता है। और पक्षियों के आवास को बचाने, प्रदूषण को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पक्षी हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग है और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

श्रोताओं, सुप्रभात। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म दिवस है। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ था। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और उदारवादी नेता थे, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर रत्नागिरी के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में अध्यापन किया और फर्ग्यूसन कॉलेज में इतिहास व अर्थशास्त्र के वो प्रोफेसर रहे थे। 1905 में उन्होंने देश सेवा के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नरम दल के नेता थे और 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने संवैधानिक तरीकों से स्वतंत्रता की वकालत की और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष भी किया था। ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं गीत।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। महाराणा प्रताप जयंती मेवाड़ के वीर योद्धा और स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप की वीरता को याद करने के लिए हर वर्ष 9 मई को मनाई जाती है। ये जयंती महाराणा प्रताप उदय सिंह और मेवाड़ के वो 13वें शासक थे और उन्हें बहादुर स्वाभिमान और मुगलों के खिलाफ संघर्ष के लिए याद किया जाता है। 18 जून 1576 को अकबर की सेना के साथ प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जीवंत कंवर थी। इस दिन विशेष पूजा, शोभा यात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनका घोड़ा चेतक बहुत प्रसिद्ध था, जो स्वामी भक्ति का प्रतीक था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ये उत्साह से मनाया जाती है और इसका उद्देश्य उनकी बहादुरी और देश प्रेम की कहानी को याद करना और नई पीढ़ी को प्रेरित करना है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। कार्यक्रम का पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं शांति विष्ट की आवाज में।

0: this for a limited time only. TNC apply. Mixer.
1: लोकगीता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मानसिंह की आवाज में अगला लोकगीत।

कर्नल राणा की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं देशगान।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, सुबह के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: भक्ति है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

0: स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओ, एक ही फिल्म में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वेलकम फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। वेलकम फिल्म 2007 में बनी थी, अनीस बज़मी द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल अभिनीत ये फिल्म। उदय शेट्टी और मजनू भाई के पात्रों और 2007 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
4: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
6: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
4: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
7: श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं अनीस बज़मी द्वारा निर्देशित वेलकम फिल्म के कुछ गीत। 2007 में ये फिल्म बनी थी और इसमें अनिल कपूर, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, परेश रावल और मल्लिका शेरावत प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

एक ही फिल्म में आप सुन रहे हैं फिल्म वेलकम के कुछ गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद राज आनंद, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत, और आज की फिल्म है वेलकम। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आप सभी श्रोताओं का आज के इस फिल्म संगीत के सफर में स्वागत।

जय श्रोताओं, तो आज हम बात कर रहे हैं संदेशों पर, चिट्ठी के पत्र और पुरानी यादों, अनकहे जज्बातों और प्यार का ये जो खूबसूरत जरिया है, चिट्ठी, पत्र, खत। चिट्ठी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, सामने वाले के दिल का आईना होती है। पुराने खत आज भी खुशबू बिखेरते हैं, क्योंकि उनमें स्याही से ज्यादा जज्बात बहते हैं। कितना इंतजार रहता है पत्र आने का, किसी की चिट्ठी आने का।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाई एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई। पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो किडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
0: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
2: स्वागत है एक बार फिर से आपका फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं चिट्ठी पत्र और खत पर। ये दौर और आज के डिजिटल युग, ईमेल और व्हाट्सएप के बीच तुलना करना, भावनाओं और तकनीक के बीच के अंतर को समझना है। पुराने समय की चिट्ठी पत्री जहां प्रेम और अपनापन लाती थी, वहीं आज के खत यानी डिजिटल संदेश केवल सूचना का माध्यम बन गए हैं। कहाँ पत्रों के लिए कई दिन कई हफ्तों का इंतजार रहता था और कहाँ आज ईमेल मैसेज तुरंत मिल जाते हैं। और वो जो एक कसक होती थी, इंतजार होता था पत्रों का, वो आजकल के डिजिटल युग में कहाँ।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र किए जा सकेंगे दाखिल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन। जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता खत्म। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होगा उत्पादन का सटीक आकलन। प्रदेश में 3,00,000 से अधिक किसान योजना से जुड़े। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिमी बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में सभी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत किया है। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती 2 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
4: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 5,989 जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 209 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंडी में 4,180, शिमला में 2,675, चंबा में 2,581, ऊना में 1,941, सिरमौर में 1,797, हमीरपुर में 1,548, सोलन में 1,543, कुल्लू में 1,504, बिलासपुर में 1,281, किन्नौर में 423 नामांकन पत्र

0: दर्ज किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
1: इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। पंचायती राज चुनाव के लिए सिरमौर जिला में दूसरे दिन बड़ी संख्या में नामांकन दर्ज किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से 7, 8 और 11 मई नामांकन दाखिल करने की तिथि निर्धारित की गई है और अंतिम दिन और अधिक नामांकन दाखिल होने की उम्मीद है।
2: याद है कि आज दूसरा दिन था नॉमिनेशन का, और अगर मैं इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज लाऊं, बिकॉज हमारे जिला सिरमौर में टोटल 8 ब्लॉक हैं, तो टोटल अब तक जिला परिषद के हमारी 29 नॉमिनेशंस फाइल हुई हैं। पंचायत समिति की हमारी टोटल 198 नॉमिनेशंस फाइल हुई हैं, तो टोटल 703 लोगों ने प्रधानी के लिए अपनी नॉमिनेशंस फाइल की है। उप प्रधान टोटल मैं बताऊं 536 और वार्ड मेंबर्स के लिए टोटल 1240 तक नॉमिनेशंस फाइल हुई है। तीसरा दिन हमारा जो आखिरी दिन होगा नॉमिनेशन फाइल करने का, वो 11 तारीख होगी मंडे।
1: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अध्यादेश के अनुसार अब संबंधित उपायुक्त व उपमंडलाधिकारी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार कभी भी चुनाव करवा सकेंगे। संशोधित अधिनियम को 6 माह के भीतर विधानसभा के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी होता था और 2/3 कोरम पूरा होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक समय में खेतों में बोई गई फसलों का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जाता है, जिसे किसानों और फसलों का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार कर कृषि योजना और बीमा दावों में तेजी लाई जा सके। केंद्र की इस योजना के तहत प्रदेश के 93,870 राजस्व गांवों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों के आंकड़े सर्वेक्षण के दायरे में आ चुके हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया इन दिनों ऊना जिला में जारी है और अब तक लगभग 72,000 खसरा नंबरों के सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जो किसानों द्वारा कृषि अथवा बागवानी के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। इनमें से लगभग 28,000 सर्वेक्षण स्वीकृत भी हो चुके हैं। सर्वेक्षण में मोबाइल ऐप और GPS तकनीक के माध्यम से फसलों की मैपिंग की जा रही है, ताकि किसानों की भूमि के रिकॉर्ड को फसल संबंधी जानकारी से जोड़ा जा सके। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिन किसानों का अभी तक इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द अपना ऑनलाइन कृषक पंजीकरण नजदीकी लोकमित्र केंद्र अथवा एग्रीस्टैक पोर्टल पर स्वयं सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि का कोई भी खसरा नंबर तथा आधार से लिंक मोबाइल OTP नंबर के लिए अपने पास रखना आवश्यक होगा। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और नीति निर्माता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार इन देशों में विश्व के करीब 68% किसान रहते हैं। ये सम्मेलन 2 चरण में आयोजित होगा। पहला चरण आज से शुरू होकर 11 जून तक चलेगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट खेती, जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों की गणना के लिए आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में हिमालयन बर्ड काउंट आयोजित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 से शुरू की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है और दुनिया की करीब 10% पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इस अभियान में वन अधिकारियों के अलावा स्कूली छात्र, प्रकृति प्रेमी व पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रतिभागी अपनी जानकारी ई बर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपलोड कर सकेंगे। नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शिमला में शुरू हुआ। कोर्सेरा कॉलेज शिमला और देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, ऊना में खैर कटान मामले में SIT गठित कर नए सिरे से जांच के आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण पर दिए झूठे आश्वासन पर मुख्य सचिव तलब। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, सुक्खू सरकार ने आम लोगों के लिए खोले सभी सर्किट हाउस। पंजाब केसरी व दिव्य हिमाचल के एक जैसे शब्द हैं, हिमाचल में पहली बार मतगणना केंद्रों पर होगी वीडियोग्राफी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कचरा फैलाने वाले होटलों, उद्योगों व संस्थानों के बिजली पानी कनेक्शन काट सकेंगे DC। अमर उजाला की एक अन्य सुर्खी है, जिला परिषद और BDC अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता समाप्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र किए जा सकेंगे दाखिल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन। जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता खत्म। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होगा उत्पादन का सटीक आकलन। प्रदेश में 3,00,000 से अधिक किसान योजना से जुड़े। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

FM पे 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का शेष भाग।

जी हाँ, तो श्रोताओं, पुराने खतों में एक प्रेम भाव होता था जो कि आजकल के ज़माने में कहाँ मिलता है। कितना इंतज़ार करते थे कि ख़त आएगा, और जब लिखना हो तो लिखने के लिए भी पहले से ही दिमाग में कितना कुछ चलता था कि हम ये लिखेंगे वो लिखेंगे, तैयारियाँ मन ही मन चलती रहती थी, और हाथ की लिखावट से व्यक्तिगत जुड़ाव रहता था जो कि आजकल के डिजिटल उसमें नहीं है, वो भाव विहीन है। और ना ही कोई सुरक्षा के लिए भी कोई डर नहीं होता था, हैकिंग का डर नहीं है, दुरुपयोग होने का डर नहीं होता था। यादों के तौर पर सालों तक हम पत्रों को संभाल कर रख सकते थे, कभी भी उसका डिलीट होने का डर नहीं है कि कहीं डिलीट हो जाएगा। उसको कितना संभाल के किताबों में या फिर अपने कहीं जगह पर उसको संभाल कर रखा जाता था। तो कितनी खूबसूरत भरी यादें जो हैं उनको कभी भी हम दोबारा से पढ़ सकते थे।

तो श्रोताओं, अब तो इन गीतों की यानी पत्र और खत से संबंधित जो भी गीत हैं, इनकी प्रासंगिकता अब समाप्ति की ओर है। संचार क्रांति के इस मौजूदा दौर में अब घर से आते जाते कोई माँ अपने बच्चों को नहीं कहती, कोई पत्नी अपने पति से ये नहीं कहती कि पहुँचते ही चिट्ठी लिखना। और ये जो आज की हाय हेलो युवा पीढ़ी को पत्र लेखन की उसका कुछ भी शायद पता ना हो, और ना ही अंतर्देशीय पत्र होते थे, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, यहाँ तक कि डाकिया भी कोई इंसान ऐसा था जो घर घर जाकर पत्र बांटता था, ये भी उनको इतना पता नहीं होता होगा। कितना प्रेम भाव था चिट्ठियों में, जिनकी शुरुआत मेरे प्रिय पापा या माताजी, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रियतम, मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी

बहना, बिटिया, छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श, ये सम्मानित शब्दों से उनका वो चिट्ठियां भरी होती थी। पत्र का माध्यम बहुत ही भावपूर्ण और अपनत्व से भरा होता था, जहां अपनों के लिए अपने मन के भाव लिखने में कोई झिझक नहीं होती थी। उस दौर में जब डाकिये को देखते ही लोग बाहर दौड़ पड़ते थे, वही बरसों पहले परदेश गए पिया की वियोगिनी दरवाजे के झरोखों से बड़ी उम्मीद से देखती थी कि शायद आज प्रियतम की पाती जरूर आएगी। लेकिन जब डाकिया आगे बढ़ जाता था तो निराशा का भाव साफ झलकने लगता था, और अगर ये पाती आ जाती है तो सीने से लगाकर चूम लेती थी। लोग पूछते थे कि हमारी कोई चिट्ठी आई है क्या, ना शब्द सुनकर भी लोग नाराज हो जाते थे।

श्रोताओ, बिल्कुल, जब भी दूर से किसी अपने खास का पत्र आता था तो ऐसा लगता था, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता था कि वो सामने ही बैठ के हमारी बातें हो रही है। बाकी सबकी ज़िंदगी में तो बहुत महत्व है ही, लेकिन सैनिकों के लिए पत्र का बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर उन सैनिकों के लिए जो

परिवार से दूर दुर्गम स्थानों पर देश की रक्षा कर रहे होते हैं। ये पत्र केवल कागज के टुकड़े नहीं बल्कि भावनाओं और अपनों के प्यार का पुल होते हैं। अपनों का पत्र प्राप्त करना सैनिकों के लिए एक बड़ी खुशी और प्रोत्साहन का स्रोत होता है। उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम जारी रखने की ताकत देता है। परिवार से दूर होने पर होने वाले अकेलेपन और तनाव की भावना को कम करने में पत्र मदद करते हैं। ये उन्हें मानसिकता और शांति और अपनेपन का एहसास कराते हैं। पत्र सैनिकों को उनके परिवार और देश से जुड़े रहने का एक माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे कि उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें याद किया जा रहा है और इसी से ये खुशी झलकती है। पत्र आया, उसमें लिखा है कि हम आपको याद करते हैं, घर वापस कब आओगे, तो यही उनके लिए बहुत बड़ी ताकत होती है, खुशी होती है।

तो श्रोताओं, पत्र खत चिट्ठी के इस सफ़र में हम ये नहीं भूल सकते उस इंसान को जिसका हमें इंतज़ार रहता था और जो इस चिट्ठी का संदेश वाहक होता था, जिसका इंतज़ार हर रोज़ हर माँ करती थी, हर पत्नी करती थी, हर भाई बहन एक दूसरे का इंतज़ार करते थे कि कब वो संदेश वाहक आए और हमें वो चिट्ठी अपनों की मिले।

तो जब संचार के आधुनिक साधन नहीं थे, तब वो इंसान खाकी वर्दी में साइकिल पे बैठा हुआ एक झोला लटकाए हुए प्रेम और स्नेह का संदेश लेकर आपके घर आता था। वे ना केवल चिट्ठियां बल्कि दूर रहने वाले अपनों का प्यार लाता था। प्रेम पत्र अक्सर हाथ से लिखे जाते थे जो प्रेमियों के बीच में गहरे निजी लगाव और भावनाओं को व्यक्त करते थे। इन पत्रों में स्याही और सुगंध और प्यार की गहराई होती थी। डाकिया है वो इंसान, डाकिये के आने का इंतज़ार और उनके साइकिल की घंटी का की आवाज़ सुनकर दिल की धड़कन बढ़ जाना उस दौर की खास यादें हैं। तो हम उस इंसान को कैसे भूल सकते हैं।

प्यार का पहला खत लिखने को वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो श्रोताओं, खत का ये सफर आज यहीं पर संपन्न होता है, खत्म होता है, तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत सीमा के साथ।

फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज जब वी मेट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहित चौहान और साथियों ने।

राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार के युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई से ये गीत। प्रीतम का संगीत निर्देशन था और बोल थे इरशाद कामिल के। फिल्म संगीत आप सुन रही हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और लीजिए अब सुनिए राशिद खान के संगीत निर्देशन में जावेद अली को फिल्म है राज 3।

0: मई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
3: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
2: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल।

0: देश। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
0: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

राहत फतेह अली खान और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म थी दे दनादन। सैयद कादरी की शब्द रचना थी और संगीत था प्रीतम का। और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम गीत।

साया फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ।

वर्षा कटोच का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के संग। और ये लीजिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत कुसुम धीमान की आवाज में।

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
4: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
5: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
6: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।

ऋषि कुमार के गाए इसी लोकगीत के साथ हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि टैगोर की

0: रचनाएं मानवता, भाईचारे और संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। गीतांजलि ने मानवता और आध्यात्म को नई राह दिखाई, जबकि जनगणमन ने देश की एकता और सम्मान को स्वर दिया। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती दो दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 5,989 जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 209 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंडी में 4,180, शिमला में 2,675, चंबा में 2,581, ऊना में 1,941, सिरमौर में 1,797, हमीरपुर में 1,548, सोलन में 1,543, कुल्लू में 1,504, बिलासपुर में 1,281, किन्नौर में 423 नामांकन पत्र दर्ज किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
0: इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अध्यादेश के अनुसार अब संबंधित उपायुक्त व उपमंडलाधिकारी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार कभी भी चुनाव करवा सकेंगे। संशोधित अधिनियम को 6 माह के भीतर विधानसभा के अंदर पारित करना अनिवार्य होता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी होता था और 2/3 कोरम पूरा होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक समय में खेतों में बोई गई फसलों का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जाता है, जिससे किसानों और फसलों का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार कर कृषि योजना और बीमा दावों में तेजी लाई जा सके। केंद्र की इस योजना के तहत प्रदेश के 93,870 राजस्व गांवों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों के आंकड़े सर्वेक्षण के दायरे में आ चुके हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया इन दिनों ऊना जिला में जारी है और अब तक लगभग 72,000 खसरा नंबरों के सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जो किसानों द्वारा कृषि अथवा बागवानी के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। इनमें से लगभग 28,000 सर्वेक्षण स्वीकृत भी हो चुके हैं। सर्वेक्षण में मोबाइल ऐप और GPS तकनीक के माध्यम से फसलों की मैपिंग की जा रही है, ताकि किसानों की भूमि के रिकॉर्ड को फसल संबंधी जानकारी से जोड़ा जा सके। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिन किसानों का अभी तक इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द अपना ऑनलाइन कृषक पंजीकरण नजदीकी लोकमित्र केंद्र अथवा एग्रीस्टैक पोर्टल पर स्वयं सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि का कोई भी खसरा नंबर तथा आधार से लिंक मोबाइल OTP नंबर के लिए अपने पास रखना आवश्यक होगा। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों की गणना के लिए आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में हिमालयन बर्ड काउंट अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 से की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है और दुनिया की करीब 10% पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इस अभियान में वन अधिकारियों के अलावा स्कूली छात्र, प्रकृति व पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रतिभागी अपनी जानकारी ई बर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज करते हैं कृष्णा शर्मा और साथियों के गाए इस लोक गीत के साथ।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति।

इस गीत के साथ हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं, पेश है देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

गैंगस्टर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सैनिक भाइयों अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में। साजिद वादेद और उदित नारायण अलका याग्निक के युगल स्वरों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, मुझसे शादी करोगी।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्योंकि का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं तेरे नाम फिल्म से, आवाज़ उदित नारायण की।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गाए मैं हूं ना फिल्म के इस गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए ये फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। तो सैनिक भाइयों जय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर परिवार।

कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत हार्दिक अभिनंदन आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम में। जी सखियों, कैसी हैं आप सब और कैसी बीत रही हैं आपकी गर्मियां? भाई गर्मियां तो बीच बीच में ठंडक का एहसास भी हमें दिला रही हैं, क्योंकि बिन बादल बरसात हो रही है कभी कभी, या यूं कहें बिन मौसम बारिश हमें देखने को मिल रही है इन दिनों। और इस बारिश ने हमारे किसान भाई बहनों की परेशानियों को थोड़ा तो ज़रूर बढ़ा दिया है, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई और गुहाई अभी बाकी है कुछ क्षेत्रों में, और किसान की मेहनत का फल भी बाकी है। मौसम साफ होगा तभी खेतों के कामकाज जल्दी से हो पाएंगे, तो उम्मीद है सखियों कि आप मौसम के मिजाज खुशनुमा ही रहेंगे और साथ ही साथ खुशनुमा रहेगा हमारा हर दिन। जी हाँ, हर दिन लेकर आता है एक नई उम्मीद, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई तरंग सखियों, और इसी नई तरंग के साथ, इसी ताजगी के साथ करनी है हम सभी ने अपने हर दिन की शुरुआत, और साथ ही साथ हर पल हर क्षण कुछ नया सीखते भी रहना है, एक अच्छी दिनचर्या अपनानी है, और हाँ अपने लक्ष्य अपने उद्देश्य ज़रूर निर्धारित करने हैं। क्या करना है, कैसे करना है, इसे पहले से ही सोच लें और एक सही दिशा, एक सही राह में खुद को ढालें और स्वयं को ले जाएं उस तरफ। और अब जी हाँ, हम भी चलते हैं कार्यक्रम में आगे और चलते हैं उस तरफ जहाँ एक प्यारा सा गीत बस तैयार ही है आपके रेडियो सेट्स तक पहुँचने के लिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या है आज के इस घर परिवार के पिटारे में कुछ खास। जी हाँ सखियों, बात करेंगे आज इस कार्यक्रम में हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में, साथ ही साथ अपने हुनर और शौक को कैसे जिंदगी का अहम हिस्सा बनाकर हमें कैसे देनी है खुद को एक अलग पहचान, इस बारे में भी होगी बातचीत आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ कपड़ों से संबंधित करेंगे जानकारी साझा, कॉटन सिल्क के बारे में देंगे आपको जानकारी और उसके रखरखाव की बात होगी। साथ ही साथ आज की हमारी रसोई महकेगी बैंगन के भरते की खुशबू के साथ, तो कुल मिलाकर मनोरंजन और जानकारियों से भरा है आज का ये कार्यक्रम सखियों, और गीत संगीत को भला हम कैसे भूल सकते हैं। तो आइए मिलकर सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत और बाकी की बातचीत गीत के उस पार। ये रहा कार्यक्रम का पहला गीत, सभी सखियों की नज़र

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
3: जी सखियों, गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम घर परिवार में। और आज का ये कार्यक्रम आप सुन रही हैं अपनी रेडियो दोस्त सीमा के संग। जी हाँ, और गर्मियों का मौसम है सखियों, और हमारी सुबह इन दिनों होती है पक्षियों की चहचहाहट से, उनकी मधुर आवाज़ से, ठंडी ताज़ी हवाओं से और हरे भरे शांत नज़ारों से। क्यों सखियो, सही कहा ना, सचमुच बहुत ही अच्छा लगता है सुबह का वो शांत वातावरण जब कोई शोर नहीं होता, बस चारों तरफ सुकून ही सुकून। और हाँ, पक्षियों का कलरव नदी झरनों में बहते जल की कलकल और एक अलग ही दुनिया में ले जाता है हमें ये, और साथ ही एक नई ऊर्जा का संचार भी करता है हमारे तन मन में। सखियो, बात करें पशु पक्षियों की तो प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, और साथ ही साथ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ये। और गर्मियों का मौसम है तो ऐसे में ज़रूर सखियो हमें योगदान देना है अपने पक्षियों को बचाने में। हम अपने घरों की छत पर या आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आप मिट्टी का कोई भी खुला बर्तन लेकर उसमें पानी उन्हें पीने के लिए रख सकते हैं। और क्योंकि सखियो आज हम मना रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि वसंत ऋतु में 9 मई को मनाया जाता है। और जैसे कि हमने पहले बात की, पक्षी हमारे पर्यावरण की सुंदरता और संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और इनका संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी तक उनकी वो मधुर गूंज, उनका कलरव पहुंच सके और ये प्रकृति की सुंदरता यूं ही बनी रहे। बात करें सखियों पक्षियों की तो पक्षी कीड़ों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं, ये खाद्य श्रृंखला को संतुलित करते हैं। पक्षी बीजों को दूर दूर तक फैलाकर नए पौधे उगाने में भी मदद करते हैं। कुछ पक्षियों का व्यवहार, जी हाँ, कुछ पक्षियों के व्यवहार से तो मौसम परिवर्तन का भी पता चलता है। तो कौन होते हैं ये प्रवासी पक्षी? जी हाँ, ऐसे पक्षी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वो भोजन अनुकूलन और है ना जलवायु या प्रजनन के लिए लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और फिर खुद को उस नए वातावरण के अनुसार ढालते भी हैं। पक्षियों की मधुर आवाज़ और रंग बिरंगे पंख हम सभी को आनंद और प्रेरणा देते हैं सखियो। सच में सखियो, जब हम पक्षियों को खुले आसमान में उड़ते, लंबी उड़ान भरते देखते हैं तो खुद को प्रेरित तो महसूस करते हैं ना। पक्षी जो छोटे से घोंसले से निकलने के बाद पेड़ पौधों की शाखाओं से होते हुए खुले आसमान में उड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो हम सब तो सखियों इंसान हैं। जी हाँ, ईश्वर ने हमें तरह तरह की खूबियों से नवाजा है और बुद्धि, विवेक, एक अच्छा शरीर, एक अच्छा मन दिया है। तो देखा जाए सखियों, तो हम तो कहीं भी उड़ान भर सकते हैं, बस मन में अटूट विश्वास होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। फिर क्या सखियो, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और आप भरेंगे अपने सपनों की लंबी उड़ान, और इसके लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। जी हाँ सखियो, हमेशा अपने शौक, अपने हुनर को जिंदा रखें, और ना सिर्फ जिंदा रखें बल्कि उन्हें और निखारें। अब बात करेंगे अपने शौक की। जी हाँ सखियो, बहुत सी सखियों में हुनर होता है या शौक होता है सिलाई, कढ़ाई या पेंटिंग करने का। बचपन की वो क्रिएटिविटी कब हमारा शौक बन जाता है शायद हमें पता ही नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे छोटी छोटी पंक्तियाँ जुड़ते जुड़ाते एक कविता का रूप ले लेती है। सजने सवरने की वो चाह कब हमारे अंदर के कलाकार को जगा जाती है नहीं पता चलता। सच में सखिए, छोटे छोटे हाथ कब करोशिये की बारीकियां और बेल बूटों और रंगों की दुनिया में रंग जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो अगर आप में भी कोई ऐसी प्रतिभा है, कोई ऐसा हुनर है, तो ज़रूर उसे आगे बढ़ाएं और उसे अपनी आजीविका के रूप में भी आप अपना सकती हैं। हम में से बहुत सारी शकियों को शौक़ होता है बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाने का, तो आप अपने हाथ का जायका दूसरों तक भी पहुँचा सकती हैं। आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकती हैं, या बहुत सारी सखियाँ अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उसे भी सखियों आप बनाकर, है ना, छोटे छोटे डिब्बों में पैक कर आप दे सकती हैं। और अब तो आजकल का ये दौर है सखियों की, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास स्मार्टफोन है, हम उनका इस्तेमाल करके अपनी जो भी हम, है ना, नया काम शुरू करते हैं, आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो उसमें हमारे स्मार्टफोन और ये इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा हमारा योगदान करते हैं, या यूँ कहें हमारा ये एक सहारा बनते हैं, हमारा साथ बनते हैं। तो बस मन में कुछ कर गुजरने की ललक होनी चाहिए, बाकी रास्ते अपने आप बनते जाते हैं और मंजिल फिर हमें मिल ही जाती है। और अब सखियों फिर से समय हो चला है एक और प्यारे से गीत का। ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी सखी, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आज के इस कार्यक्रम में, और आगे की बातचीत अब कर लेते हैं। आज बात हम कर रहे हैं अपने हुनर को एक नया रूप देने की। तो सखी, आप अपने हाथों की कलाकारी से कई तरह के स्वेटर, टोपी, जुरावे, है ना, स्कार्फ बनाकर बेच भी सकती हैं। और हाँ, अगर सजने संवरने की, जैसे हमने पहले बात की, आपको शौक है, तो आप दूसरों को भी ये चीज़ सिखा सकती है। सुंदर सी मेहंदी लगाकर उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा सकती हैं। आप अपना पार्लर भी खोल सकती हैं और ये हुनर दूसरों को भी सिखा सकती हैं। तो वही है से, क्योंकि राहें कई हैं, रास्ते अनेक हैं, बस अब ये आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन सी राह चुननी है और कहाँ कैसे अपने हुनर का जादू बिखेरना है। अच्छा, एक और चीज़ सखियो, हमारी बहुत सी सखियाँ लिखने का शौक़ भी रखती हैं, तो ज़रूर अपने विचारों को कलमबद्ध करें सखियो, उन्हें कविता में पिरोएं, अपनी डायरी के पन्नों पर उतारें, और जब भी मौका मिले तो खुले दिल से उन्हें साझा करें अपनों के संग, अपने दोस्तों, अपनी सखी सहेलियों के संग। यकीनन सखियो, ये और प्रेरणा देंगी सखियो, है ना। जब हम किसी के साथ साझा करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और लिखें, और जब तारीफ होती है तो सच में कुछ अलग ही चमक चेहरे पर आती है। तो अपनी अभिव्यक्तियों, अपने विचारों को संजोकर रखें सखियो, उन्हें लिखें, है ना, उन्हें डायरी में उतारें। और सबसे बड़ी बात, ये ज़िंदगी आपकी है, इसे कैसे जीना है ये सिर्फ और सिर्फ आप निर्धारित करेंगे। कैसे अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाना है ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है सखियो। और हाँ, कैसे जीवन को सरल बनाना है ये आपसे अच्छा और कोई नहीं आपको बता सकता। और देखा जाए तो बनी बनाई परिपाटी पर सखियो नहीं चलना है, थोड़ा हटकर चलें, और कुछ करना है जीवन में तो डट कर चलें। ना हारें कभी मुश्किलों से, ना परवाह करें तूफानों की। जी हाँ, इन पंक्तियों को हमेशा याद रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अब हम भी बढ़ते हैं कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे, और बात करते हैं, जी हाँ, कॉटन सिल्क के कपड़ों के रख रखाव की सखियो। कपड़ा कोई भी हो, डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी संभाल कर रखते हैं, किस तरीके से उसे वॉश करते हैं, धोते हैं, है ना, प्रेस कैसे करते हैं। जितने तरीके से, जितने सलीके से हम उनकी केयर करते हैं, वो उतने ही लंबे चलते हैं। तो अगर बात करें कॉटन सिल्क की, तो ये तो बहुत ही सॉफ्ट और एक मुलायम तरह का कपड़ा होता है। तो सबसे पहले तो इन्हें धोने के लिए बहुत ही हल्का आपने पाउडर इस्तेमाल करना है, और इन्हें धूप में डायरेक्टली नहीं सुखाना है, आप इन्हें छाया में, है ना, उल्टा करके सूखने रख सकते हैं। इनकी चमक बनाए रखने के लिए हमेशा इन्हें वैसे तो ड्राई क्लीन किया जाता है, और अगर आप घर पर धोना चाहें तो बहुत ही अच्छा आपने पाउडर इस्तेमाल करना है, उसके बाद इन्हें धोना है। अच्छा सखियो, मशीन वॉश इन्हें कभी नहीं करना है, यानी मशीन में इन्हें कभी नहीं धोना है। वैसे तो हमारी सखियाँ बहुत जागरूक हैं इस सब मामले में, है ना, जब भी शादियों का सीज़न चलता है तो बहुत सारे हमारे नए कपड़े हो जाते हैं, तो हमारी सखियाँ तो वैसे उन्हें अलग से हाथों से ही धोती होंगी, लेकिन फिर भी, है ना, कई बार हो जाता है कि इतने सारे कपड़े हैं, चलो मशीन में डाल देते हैं। तो नहीं सखियो, जो आपके बहुत महंगे कपड़े हैं, जो, है ना, कॉटन सिल्क के कपड़े हैं, या जिसमें जरी का काम है, जिसमें कढ़ाई है, तो उन्हें आप, है ना, थोड़ी देर भिगो कर रख दें, और उसके बाद हल्के हाथों से उन्हें धोकर अच्छे से छाया में सुखा लें। और अगर इन्हें इस्त्री करना है, है ना, प्रेस करने की हमने बात की, तो वो भी आप चाहें तो इन्हें

तो हमारी सखियां बनाती हैं, और इन दिनों किचन गार्डन में भी बैंगन जो है लगने शुरू हो गए होंगे उनके, तो फटाफट से तोड़ लें उन्हें, और है ना गोल वाले बैंगनों का इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए। और सबसे पहले उन्हें चूल्हे में भून सकती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, तो आप गैस के चूल्हे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उस पर इन्हें अच्छे से भून लें, और उसके बाद है ना अच्छे से इसका छिलका उतार लें। आप इन्हें डायरेक्ट है ना नलके के नीचे भी रख सकती हैं, उससे भी छिलका जो है वो पानी से उतर जाता है। जो रह जाता है थोड़ा बहुत उसे हाथ से निकाल लें, इन्हें अच्छे से मैश कर लें। दूसरी तरफ तड़का तैयार कर लें इसके लिए, है ना तेल डालें, उसमें जीरा आप डाल सकती हैं, धनिया डाल सकती हैं, उसके बाद आप है ना बारीक कटे हुए प्याज उसमें डालकर अच्छे से उसे चलाएं, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर डालें, हरी मिर्च इसमें ज़रूर डालें सकिए, और बस उसके बाद जो मैश किए हुए बैंगन है वो भी इसमें ऐड कर दें और अच्छे से चलाएं ढक्कन लगाकर। और थोड़ी देर के बाद सखियो तैयार है आपका बैंगन का भरता। इसे हरे धनिए से सजाएं और परोसें घर के बड़ों को छोटों को सभी को, और खुद भी खाएं और आनंद ले सखियो। और अब चलते चलते आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

जी सखियो, तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले किसी कार्यक्रम में कुछ नई बातों, कुछ नए तरानों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है जितेंद्र कुमार। इसी के साथ प्यारी सखियों, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखती है कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहाँ नृत्य कर रही हैं उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: इस गाने में कौन सा शब्द आया है? याद कीजिए, गली।
1: बड़ा

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आज़ाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियाँ इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज़्यादा मिलें तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफ़र। हमारे साथ इस सफ़र में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और यह आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा।

और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आज़ाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटा पटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है, चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीतमय प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: चलत मुसाफिर मोहलिया दे पिंजड़े वाली मुनिया।
1: जी, इस गीत से हमने लिया है शब्द मुसाफिर।

0: बैठी बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या
0: रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले ली।

जी तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी, जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चल लें। बिल्कुल चल लें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार हैं आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीज़ों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज़ देता, न किसी चौखट पर उसका इंतज़ार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सुने मन को छू लिया, जैसे बरसों से सूखी धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज़ थी जिसमें अपनापन था, एक नज़र थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार। गीत कीजिए फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है।

0: हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबह लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज़ दी थी अमीरबाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज़ है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज़ है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से के गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज़ क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज़ थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज़ नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया,

भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया,

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया।

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबह लक्ष्मी वो नृत्यकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक। आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी, जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूँ सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ

दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों। लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और ज़रूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे

असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो ज़रूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज़्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफ़र है और सच्चे दोस्त इस सफ़र के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान

0: रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोबि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस वक्त आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

लगे है तो करजवामा खटक होइबे करी, नैन लड़ जाए हैं नैन लड़ जाए हैं तो मनवामा कसक होइबे करी। थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धा। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

श्रोताओं, अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी धर्मशाला इस मदर डेज के अवसर पर लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम, माँ मेरे दिल की आवाज। क्या आप अपनी माँ के लिए कोई विशेष संदेश, शुभकामना या प्यार भरा समर्पण भेजना चाहते हैं तो अपने दिल की बात हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। दिनांक रहेगी 10 मई, समय रहेगा 8:30 से 9 बजे तक, और व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9914172223। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9914172223। आपका संदेश इस विशेष कार्यक्रम में प्रसारित किया जा सकता है ताकि आपकी आवाज़ पहुंचे आपकी माँ तक, प्यार सम्मान और कृतज्ञता के साथ। तो देरी किस बात की, इस मदर्स डे अपनी माँ को बताइए कि वे आपके लिए कितनी खास हैं। आकाशवाणी धर्मशाला, आपकी भावनाओं की आवाज़।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि कोई भी विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। वे आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को नई दिशा देने और सामाजिक संवाद को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे के अनुसार इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तरीकों से विवाद

0: वादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज सचिव सी पाल रासू ने पंचायत चुनाव के चलते आज पालमपुर में स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल से जुड़े सभी निर्वाचन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती दो दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं। प्रदेश के कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो रहा है। नगर निगमों सहित शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के नेता भी विभिन्न स्थानों पर अपनी अपनी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई दिशा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से शिमला में 2 दिवसीय मंथन मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तकनीक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से MSME क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस आयोजन में देश भर से छोटे उद्यमी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। MSME व स्टार्टअप कमेटी के चेयरमैन ज्ञानचंद मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई, ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें।
1: सरकार की जो योजनाएं हैं उनको MSME को बताना, क्या ग्रांट्स हैं, क्या सब्सिडी हैं, कैसे लोन पा सकते हैं, कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कंप्लायंस कैसे करना है, सरकार की जो विभिन्न पॉलिसीज हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, इन सब चीजों को लेकर के वो DFO ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं MSMEs के लिए अपने क्षेत्रों में। सो पूरे देश के 55 DFO यहाँ पर मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किए हैं, जो आपके यहाँ होटल में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी, लेखक, विचारक और कवि थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने समाज को नए विचारों, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव को गहरी श्रद्धा व कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है और उनके विचार हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है संवहनीय ऊर्जा विकास के लिए लघु जलविद्युत का महत्व। वाचक हैं राकेश शर्मा।
0: जल के प्राकृतिक प्रवाह से उत्पन्न होने वाली पनबिजली दुनिया के सबसे भरोसेमंद और विकसित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। भारत के तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य के बीच ये ग्रिड की स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा और प्रणाली की मजबूती सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। सौर और पवन जैसे रुक रुक कर मिलने वाले स्रोतों के विपरीत पन बिजली से लगातार 24 घंटे बिजली मिलती है। जैसे जैसे देश मिलीजुली स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव ला रहा है, जल विद्युत अपरिहार्य बन गई है। इस रणनीतिक महत्व को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु पन बिजली विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से खासतौर पर उन पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को फायदा होगा जहां इन परियोजनाओं की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ये मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए है, जिसका कुल परिव्यय 2584 करोड़ 60 लाख रुपए है।

0: इस योजना का लक्ष्य लगभग 1500 मेगावाट की नई लघु जल विद्युत क्षमता को विकसित करना है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जहां लघु जल विद्युत की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अक्सर वहां बिजली की पहुंच से जुड़ी चुनौतियां आड़े आती हैं। विकेंद्रीकृत और स्थानीय स्तर पर उत्पादित बिजली को बढ़ावा देकर यह योजना दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक भरोसेमंद बिजली पहुंचाने का प्रयास करती है और साथ ही पारंपरिक ईंधनों पर हमारी निर्भरता को भी कम करती है। ऊर्जा उत्पादन के अलावा इस पहल में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। छोटी पनबिजली परियोजनाएं अपने न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, कम जमीन की जरूरत और लंबी परिचालन अवधि के साथ विकास का एक संवहनीय रास्ता दिखाती हैं। स्थानीय निवेश को बढ़ावा देकर, रोजगार पैदा करके और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करके ये योजना लघु पनबिजली को भारत के स्थायी और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की आधारशिला के रूप में स्थापित करेगी। ये योजना कार्यान्वयन में सहायता करने, परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार करने और विभिन्न क्षेत्रों में लघु पन बिजली परियोजनाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लक्षित उपायों की एक रूपरेखा तैयार करती है। इसका मुख्य ध्यान वित्त पोषण, परियोजना की तैयारी और विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में निष्पादन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर है। इस योजना से लघु जल विद्युत क्षमता में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। ये योजना स्वदेशी संयंत्रों और मशीनी के उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेगी। भविष्य की परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपलाइन विकसित करने में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सहायता के लिए अलग से 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना से निर्माण चरण के दौरान लगभग 51 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त ये परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में निरंतर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। लघु पनबिजली विकास योजना की स्वीकृति भारत की अप्रयुक्त लघु पन बिजली क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लक्षित वित्तीय सहायता, अवसंरचना, विकास और संवहनीय संयोजन से यह योजना स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ उपेक्षित क्षेत्रों में समावेशी विकास को गति देने के लिए तैयार है। लघु जल विद्युत एक संतुलित समाधान प्रदान करता है, जो संवहनीय विकास के साथ ऊर्जा सुरक्षा को जोड़ता है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में विश्वसनीय 24 घंटे बिजली प्रदान करके और ग्रिड को मजबूत करके। ये परियोजनाएं समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लघु जल विद्युत भारत के स्वच्छ ऊर्जा के बदलाव के एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय घटक के रूप में उभर रहा है। ये विशेष रूप से पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहां विकेंद्रीकृत उत्पादन न केवल संवहनीय बिजली प्रदान कर सकता है, बल्कि ऊर्जा पहुंच को बढ़ाकर स्थानीय आजीविका में सहायता भी कर सकता है, जिसमें ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। हाल ही में मंजूर की गई लघु पन बिजली विकास योजना के माध्यम से भारत सरकार लक्षित प्रोत्साहन, सरल प्रक्रियाओं और बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के जरिए इस विविध क्षमता का सदुपयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है डाक।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
4: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
4: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा, आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपये भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
4: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: नंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्टमास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बंट जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्टमास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्टमास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी, तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है, क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम, सिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने?
2: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
2: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तू लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते, जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा?
0: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ, लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: सिंगारम ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी

0: धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
1: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
2: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ। देखना ये शिंगारम।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं, अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा, अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक खाने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे अरे अरे, जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस काम में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा?
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा, ये बात है?
0: छोड़
2: दे,
3: छोड़ दे मुझे। चेहरा बंगे, तुझे मैं छोड़ समा डालूंगा।
1: अरे वाह, अरे दागी ने मार डाला। अरे बचाओ, बचाओ।
3: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
1: अरे बकवास बंद करो डाकिये, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से। अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों बाल उधेड़ कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
1: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
4: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
4: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।

0: लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं। नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
1: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
0: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे विविध भारती के कार्यक्रम।
4: जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के ज़माने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है।

0: तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊँगी
0: जी।
1: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा तो मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छा लगता है और
0: हाँ
1: उससे ज़्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुँच जाऊँगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
0: क्या बात है
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: प्रमिला जी। सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी,
1: जी
0: तो हम तब से बात शुरू करें
1: जी
0: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला है।
1: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे,
0: जी
1: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
0: हाँ
1: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे,
0: जी
1: ये मेरा
0: जी
1: नेचर नहीं था।
0: हाँ
1: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली।
0: हाँ हाँ
1: तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं
0: जी जी
1: उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं,
0: जी
1: राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
0: वाह
1: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे, तो
0: हाँ
1: एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके,
0: जी जी जी
1: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज़्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए, बहुत
0: हाँ
1: यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम,
0: जी
1: क्योंकि पुराने गाने ज़्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
0: वाह वाह।
1: जी,
0: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
1: पहला शो 1975 14 अप्रैल,
0: जी
1: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के
0: बिल्कुल
1: दिन,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
0: क्या बात है।
1: जी,
0: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता
1: मुहूर्त
0: है।
1: माना, तो
0: क्या बात
1: हमारे
0: है।
1: एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं, अच्छे जिस
0: हाँ
1: दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है,
0: जी
1: गुड़ी
0: जी
1: पाड़वा।
0: क्या बात है।
1: जी
0: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
1: हाँ,
0: थी।
1: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
0: जी
1: मन्नादा
0: जी
1: के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कोणा से, वो जो गाना है
0: जी
1: मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कोणा से मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
0: जी
1: मेरी एक पोती वहाँ रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना से ये आजी ने गाना गाया है तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे बोली
0: अच्छा।
1: तुम मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ जरूर
0: ओह
1: गाओगी
0: क्या बात
1: बहुत
0: है।
1: मजा आया उस
0: वाह
1: दिन
0: वाह।
1: बच्चों से लेकर।
0: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
1: जी
0: हुआ,
1: जी
0: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
1: लिस्ट
0: आपको
1: बनाई
0: याद
1: थी,
0: है?
1: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, क्या
0: जी
1: अजीब दास्तां है ये,
0: हाँ हाँ
1: इस तरह
0: हाँ
1: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
0: बिल्कुल। जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
1: हाँ जी,
0: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
1: हाँ जी
0: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
1: जी
0: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
1: राइट।
0: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
1: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
0: हाँ
1: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
0: ओह क्या बात
1: आई
0: है।
1: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
0: अलग अलग
1: गाना
0: गायिकाओं ने अलग
1: है।
0: अलग
1: हाँ
0: मौके पे इसे
1: ऐसे मैं
0: गाया है।
1: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
0: हाँ
1: अलग अलग
0: हाँ
1: गायिकाओं के गाने हुए,
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: झलक
0: हाँ
1: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
0: जी
1: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब जो
0: मिलकर
1: आती थी सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था,
0: लेकिन
1: पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति दिवाली सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को। जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था। तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे गाने की तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके, अपना क्लास खत्म करके

0: के घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
1: अच्छा।
0: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
1: वाह,
0: पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
1: जी
0: वहाँ म्यूज़िक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
1: जी जी
0: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
1: हाँ
0: दिल्ली में,
1: हाँ
0: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा,
0: संगीत शारदा,
1: जी जी
0: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
1: ओ
0: ये मेरी
1: अच्छा,
0: आवाज़ ज़रा भारी थी, जाड़ी थी, तो
1: हाँ
0: पुरुष के गायक के लायक
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: और
1: अच्छा
0: हाइट भी अच्छी थी।
1: जी
0: तो मैं
1: जी
0: कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
1: जी जी जी
0: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो
1: हाँ,
0: स्कूल
1: चूंकि ये महिला
0: के
1: विश्वविद्यालय है
0: महिला
1: तो
0: नहीं,
1: सारे,
0: वो स्कूल की बात कर रही हूँ,
1: अच्छा
0: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
1: अच्छा
0: तो वो हमने उधर किया
1: ओहो
0: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
1: हाँ,
0: दिल्ली गई यूथ
1: क्या बात,
0: फेस्टिवल के,
1: अच्छा अच्छा
0: बाकी
1: अच्छा
0: फ्रेंड्स वगैरह थे साथ,
1: हाँ हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: मज़ा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था,
1: क्या बात है।
0: बहुत मज़ा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: ज़रूर
1: सके।
0: ज़रूर।

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती, पुरुष लोग
1: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट, राइट।
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
2: इस
1: नाटक में निभाई थी।
2: हाँ जी।
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले ज़माने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ।
2: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है।
1: हाँ।
2: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
1: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने
1: जी,
2: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
1: हाँ।
2: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: वो
2: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
1: हाँ।
2: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है।
1: हाँ।
2: कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज़्यादा अच्छा संभालती थी।
1: अच्छा।
2: बच्चों को।
1: हाँ।
2: तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
2: और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
2: हाँ, तलत साहब के साथ, एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो

0: दो गाने, चलिए प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ
1: हाँ
0: फंक्शन हुआ लायंस
1: जी
0: क्लब का,
1: जी
0: तो नंदी दुग्गल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, मैंने चलेगी कूदते
1: दौड़ेगी
0: जाऊंगी कूदते जाऊंगी।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, तीन
1: क्या
0: महीने
1: बात,
0: का वो टूर था हमारा,
1: क्या बात है।
0: और दो बेटियां, एक
1: हाँ
0: चार
1: हाँ
0: साल
1: हाँ
0: की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं
1: हाँ
0: बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
1: हाँ हाँ
0: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स हैं
1: जी
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज़ में, हमको मतलब देखा हुआ जाके
1: जी
0: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने,
1: अच्छा
0: ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे।
1: वाह
0: बहुत मज़ा आया
1: क्या बात
0: टूर में,
1: है।
0: उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को
0: और
1: आपने याद
0: तलत
1: किया,
0: साहब तो
1: तो कोई गाना उनका
0: ओ
1: इस वक्त हम सुनाए अपने
0: ओके
1: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे।
1: जी
0: हाँ
1: जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का?

0: था।
1: नहीं, सबसे
0: आपने
1: पहले
0: वेस्ट इंडीज के बारे में बताया,
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गए।
1: वशिष्ठ तलत साहब के साथ गए, फिर
0: हाँ
1: उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ,
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों
0: जी
1: के लिए,
0: जी
1: तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज,
0: हाँ
1: वो तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
0: अच्छा
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे
0: अच्छा
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: उनको,
0: जी जी
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती है वहाँ शेर कैसा है इधर उधर इधर सब घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी जी
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
0: जी
1: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
0: हाँ
1: छुट गए फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा ये थे का कि अपने तीन चार गाने गा के ये
0: हाँ
1: लोगों सामने से सुनते बैठूं,
0: हाँ
1: बहुत ही भाग्य था
0: क्या
1: मेरा
0: बात
1: इस
0: है।
1: बारे।
0: पर
1: रफी
0: किशोर
1: साहब को
0: दा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: डुएट नहीं गाया
0: नहीं गाया? अगर किशोर दा को याद करने के लिए कोई गीत हम
1: जरूर
0: सुने तो कौन
1: जरूर
0: सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले
0: मतलब
1: दूसरों के
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह ये है कि लोगों को टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी,
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: वो हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी,
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी,
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बंद के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
0: अच्छा,
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ,
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला भी वो लिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में। मेरी
0: अच्छा,
1: सब सहेलियाँ, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो,
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज़ सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके ज़रिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज़ नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नई आवाज़ जाती है, काली एक, काली पाँच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूज़िक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो,
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है,
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी
0: अच्छा
1: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी
1: साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मज़ा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो
1: है।
0: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक
0: हाँ,
1: का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगा कर हैशा, इस फिल्म का
1: दम लगा
0: गाना
1: के
0: है
1: हैसा
0: जी,
1: उसका,
0: गीत लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है हारमोनियम
1: हाँ,
0: पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: जरा
0: है,
1: से
0: ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा
1: या
0: है क्या? आप
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं की आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी
0: हाँ
1: गीता
0: हाँ
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है,
0: आशा जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज़ नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊँ,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो
0: बिल्कुल
1: आवाज़ डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल
1: हूँ
0: बिल्कुल, अनुभव
1: क्योंकि
0: आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: हाँ
1: चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से, तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही
0: बिल्कुल
1: लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते
1: चौबड़े
0: हैं,
1: में
0: क्या बात है। तालीम बहुत ज़रूरी है,
1: जी,
0: क्लासिकल सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: ज़रूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज़ की तैयारी, फिर जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज़
0: हाँ
1: नॉट,
0: हाँ
1: मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वराइटीज़
0: हाँ
1: वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल न नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज़ की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत ज़रूरी है,
0: बिल्कुल,
1: आवाज़ अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: मुझे लगता है, पता नहीं
0: खैर
1: अभी
0: बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गंवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे
0: सही बात, बिल्कुल
1: ना
0: सही। मन्नता की बात करते हैं,
1: जी,
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्ना दा के
0: किया,
1: साथ, हाँ
0: संगीतकार थे श्री रामचंद्र,
1: श्री रामचंद्र,
0: तो मन्ना दा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा
1: हाँ बड़ौदा
0: हाँ
1: में, मन्ना दा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
0: जी,
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी जी
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी के आवाज़ में जाता होता है किसी के आवाज़ में, तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपने आवाज़ में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, और
0: अच्छा,
1: मेरे आवाज़ में अपने आप आ गया वो सब
0: ओहो
1: रियाज करके,
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा, फिर भी उन्होंने ये भी बोला
0: हाँ
1: कि ज़्यादा नहीं करना,
0: हाँ
1: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज़ में बहुत ही,
0: अच्छा
1: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: हाँ
1: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
0: जी जी
1: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी, ये
0: हाँ
1: शील सजणे सजणे
0: हाँ
1: माझाच पाठी,
0: बिल्कुल,
1: ये
0: उनके
1: लाइन
0: लिए
1: थी,
0: टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत
0: रहा
1: बहुत 3 बार
0: वो
1: हुआ टेक, 4 बार हुआ, इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो
0: जी जी
1: उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
0: हाँ हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: बराबर ये
0: नुक्ता लगा
1: करके
0: के,
1: लाइन
0: क्यों
1: में,
0: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें?
1: हाउस ऑफ बैम्बू
0: जी,
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द हा जिसे मॉड्यूलेशन
0: हाँ
1: फोर द की उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है,
0: जी,
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो बांबू से घर बांबू से दार बांबू ची जमीन पिवळी शार बांबू से घर बांबू से दार बांबू ची जमीन पिवळी शार बांबू चा घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला झुलवित राहिल पापा पापा तू लाने मला नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर
1: उनका तो। क्या
0: वाह वाह। मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं।
1: जी जी जी।
0: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है। हाँ। मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए, जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने हैं।
1: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं।
0: बहुत से थे।
1: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन।
0: वाह,
1: बहुत अच्छे। थोड़ा सुना था

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लिखावटी
0: गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफ़ी साहब को अभी याद करते हैं, रफ़ी साहब के साथ।
1: रफ़ी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफ़ी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी। इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार। मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया, तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को वो गाना ही ऐसा है। तो रफ़ी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफ़ी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी जी,
1: हाँ,
0: हंसते जख्म,
1: जी जी, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब ही उनके मिलने के बाद जहाँ ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त रेजर वेजर कुछ लाया था, स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं टूर कैंसिल, क्योंकि यह सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं, मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओहो।
2: उस वक्त फोन बीन ये भी कुछ नहीं था।
1: हाँ,
2: तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो।
1: हाँ,
2: फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे।
1: हाँ,
2: तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है।
1: हाँ,
2: ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: हाँ,
2: वो मैं लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी, जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए।
1: हाँ।
2: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका साथ मिला।
1: जी जी।
2: उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए। तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं, जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं, कभी कभी चढ़ कर। तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी

0: आसपास जो लोग हैं बाकी के,
1: हाँ
0: उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात है। परिवार की बात चली है
0: जी,
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में,
0: मेरी
1: आपके
0: दोनों
1: बच्चों
0: बेटियां
1: में
0: मेरे साथ गाती थी
1: अच्छा
0: शो में शुरू से। मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरे मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोल्स कर रही हूँ,
1: अच्छा
0: क्योंकि उन्होंने तब कोई सीखा नहीं था गाना, वो
1: अच्छा
0: छोटी थी दोनों,
1: हाँ
0: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा
0: हाँ मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गया,
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते
0: उन्होंने
1: हुए देखा
0: गाते
1: सुना
0: देखा
1: है
0: तो उन्होंने
1: तो
0: वो
1: उनके
0: भी
1: अंदर वो
0: गाती
1: अपने
0: थी
1: आप,
0: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे
1: अरे
0: नहीं
1: वाह
0: कि
1: क्या
0: कशा
1: बात है
0: क्यों आए हैं, ऐसे
1: क्या
0: ऐसे
1: बात
0: नहीं।
1: है।
0: और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी
1: हाँ
0: ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे,
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं
1: क्या बात है
0: है।
1: क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है
0: वह बहुत बड़ा
1: क्या बात। जी जी जी जी
0: कॉम्प्लीमेंट।
1: अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हम
1: कोई
0: लोग
1: गाना।
0: तीन डुएट भी गाते थे,
1: जी,
0: वो मन क्यों बहका रे बहका वो है,
1: ओहो क्या
0: फिर
1: बात है,
0: कजरा मोहब्बत वाला वो है,
1: हाँ
0: फिर अन्ना
1: हाँ
0: जी का अपलम चपलम, उस पे डांस भी
1: क्या
0: होता
1: बात
0: था
1: है
0: मेरे
1: क्या
0: शो में,
1: बात है
0: ऐसे सब डुएट डोगाने हम लोग ने। तो
1: क्या।
0: वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे।
1: वाह
0: हाँ फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो, पंख
1: अच्छा
0: होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो
1: अच्छा
0: में,
1: अच्छा अच्छा
0: बहुत लोगों को पसंद
1: तो क्यों
0: आता
1: नहीं
0: था।
1: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं
0: अरे
1: को।
0: बाप रे।
1: हाँ रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान
3: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
4: आज के फनकार।
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
5: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
3: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
6: सुनिए,
7: कहिए,
8: सुनिए एक खुशखबरी,
7: कहिए ना,
8: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
7: शुक्रिया, शुक्रिया।
8: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है कुछ ही देर में। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां आप 5 बजे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव M.A. बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता

0: गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्वकप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs were sworn in as cabinet ministers. Their cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu. More from our correspondent.
2: Today is 25 Boishakh, an auspicious day, birth anniversary of Kovi Guru Rabindranath Thakur, which is celebrated across the state. This day has been selected for the swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nobin, and other leaders of the Bharatiya Janata Party present in the swearing-in ceremony. The program started with floral tribute to Kovi Guru Rabindranath Thakur. Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Shubhendu Adhikari and other dignitaries paid respect to Kovi Guru. Kollan Laha reporting from Kolkata.
1: On the occasion, Prime Minister Modi took the blessing of 97-year-old Makhanlal Sarkar, one of the senior most state leaders, during the BJP's initial days at the swearing-in ceremony. In a grand gesture, Mr. Modi hugged the veteran leader and touched his feet. Sarkar was the aide of Shyama Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Jan Sangh. BJP has won 207 seats in the West Bengal 2026 assembly elections, while Trinamool Congress secured 80 seats after ruling the state for 15 years. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking oath as the Chief Minister of West Bengal. In a social media post, the Prime Minister said, Mr. Adhikari has made a mark as a leader who has remained deeply connected to the people and understood their aspirations from close quarters. The Enforcement Directorate has arrested Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in connection with an alleged money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. Earlier, the ED had conducted operations at 5 locations in Delhi, Gurugram and Chandigarh in connection with the case. The action was taken under the criminal sections of the Prevention of Money Laundering Act, PMLA 2002. The agency had informed that the case pertains to alleged large-scale money laundering through fake GST purchases of mobile phones worth over 100 crore rupees and subsequent exports to round-trip illegitimate funds from Dubai to India. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Prime Minister Modi will also embark on a two-day visit to Gujarat starting tomorrow, the Prime Minister's office said. On the second day of his visit, Mr. Modi will participate in Somnath Amrit Mahotsav, marking the 75th anniversary of the Somnath Temple's restoration. The Reserve Bank of India, RBI, has imposed monetary penalties on Hinduja Housing Finance Limited and Yes Bank Limited for non-compliance with regulatory directions related to governance and Know Your Customer KYC norms. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha yesterday. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested with multiple payloads targeted to different targets, spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. The ministry said Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, the Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Summer rains intensified across Kerala as the Indian Meteorological Department forecast isolated heavy rainfall accompanied by lightning and strong winds in various districts of the state over the next 5 days. The IMD issued a yellow alert in 9 districts today. In IPL cricket, hosts Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. And with that, we end this news bulletin.
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं, अब लीजिए सुनिए फिल्मों से कुछ भजन। शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार के इस भजन के साथ। मेरा जीवन साथी फिल्म से ये भजन है, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, आर डी बर्मन ने धुन तैयार की है।

धड़कन फिल्म से ये भजन अभी आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, गीतकार संगीतकार रवि। फिल्मों से इस समय भजन आप इनका आनंद ले रहे हैं। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ आप जुड़े हुए हैं और 103.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम का अगला भजन आपको हम सुनवा रहे हैं। चंद्रशेखर गाडगिल का गाया ये भजन है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आर डी बर्मन ने धुन तैयार की है, फिल्म है अशांति।

कार्यक्रम का आखिरी भजन कुमारा बाप फिल्म से। राजेश रोशन के संगीत से सजा ये भजन मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर साथियों की आवाजें।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से कुछ भजन। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।
1: युवा मंच।

कार्यक्रम युवा मंच में सभी युवा दोस्तों का स्वागत और साथ ही साथ सभी श्रोताओं का भी स्वागत। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रोजाना की तरह आज भी हाजिर हैं हम कार्यक्रम युवा मंच लेकर और प्यारे प्यारे से गीत इस कार्यक्रम में हम अपने युवा दोस्तों और श्रोताओं को सुनवाते हैं। साथ ही बात होती है किसी नए विषय पर हर रोज। आज जिस विषय पर हम श्रोताओं से बात करने जा रहे हैं उस पर बात हम करेंगे, लेकिन पहले श्रोताओं को एक गीत सुनवाएंगे और इस गीत से श्रोता अंदाजा लगाएंगे आज के विषय का।

जी कार्यक्रम युवा मंच इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और जो श्रोता सुबह से रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो शायद मालूम होगा कि आज मनाया जा रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और जो श्रोता नहीं सुन पाए हैं उन्हें हम बता दें, हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है और आज यानी 9 मई को ये दिवस मनाया जा रहा है। प्रवासी पक्षियों के आवासों के संरक्षण और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन मई महीने के दूसरे शनिवार को वसंत प्रवास के रूप में और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को शरद प्रवास के रूप में मनाया जाता है, ताकि पक्षियों के चक्रीय प्रवासन को दर्शाया जा सके। इस अभियान की शुरुआत साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। युवा मंच कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन और उसका असर प्रवासी पक्षियों पर। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, नीले आसमान में लंबी कतार बनाकर उड़ते पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए बिना किसी GPS बिना किसी गूगल मैप के, ये हमारे प्रवासी पक्षी प्रकृति के सच्चे यात्री। लेकिन आज इनकी उड़ान में कई तरह की रुकावटें आ रही हैं और इसकी वजह है बदलती जलवायु। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रवासी पक्षी होते कौन हैं। प्रवासी पक्षी वह होते हैं जो मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे सर्दियों में ठंडे इलाकों से गर्म क्षेत्रों की ओर और गर्मियों में फिर वापसी। ये यात्रा हजारों किलोमीटर लंबी हो सकती है। भारत में साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गूज, फ्लेमिंगो जैसे कई प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं। अब सवाल उठता है जलवायु परिवर्तन इन पर कैसे असर डालता है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन का मतलब है पृथ्वी के तापमान, वर्षा, हवा के पैटर्न आदि में दीर्घकालिक बदलाव। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का अत्यधिक गर्म होना इसका सबसे बड़ा कारण है और यही बदलाव प्रवासी पक्षियों की जिंदगी को पूरी तरह बदल रहा है। पहला सबसे बड़ा जो असर है वो है माइग्रेशन टाइमिंग में बदलाव। पहले जो पक्षी एक निश्चित समय पर यात्रा शुरू करते थे, अब वो या तो जल्दी निकल रहे हैं या

0: देर से। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है मौसम का बदलता पैटर्न। जब उन्हें भोजन मिलना चाहिए उस समय वो उपलब्ध नहीं होता, इससे उनके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। दूसरे असर की बात करें तो जो उनका रूट है यानी रास्ता है उसमें बदलाव। प्रवासी पक्षी सदियों से एक ही मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण उनके रास्तों में आने वाले वेटलैंड्स, झीलें और जंगल या तो सूख रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। इससे उन्हें नया रास्ता ढूंढना पड़ता है जो अधिक लंबा और खतरनाक भी हो सकता है। तीसरे सबसे बड़े असर की बात करें वो है हैबिटेट लॉस यानी आवास का नुकसान। जब तापमान बढ़ता है तो कई प्राकृतिक स्थान जैसे दलदली क्षेत्र, तटीय इलाके और जंगल प्रभावित होते हैं। ये सभी स्थान जहां प्रवासी पक्षी रुकते हैं, आराम करते हैं और भोजन करते हैं, इनके नष्ट होने से पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थान कम होते जा रहे हैं। और दोस्तों, एक गंभीर असर और भी है जो है प्रजनन पर असर। अगर पक्षी समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचते तो उनके प्रजनन चक्र पर भी असर पड़ता है। इससे उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो सकती है और कुछ प्रजातियां तो विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ समस्या की बात करेंगे? जी नहीं, हमें बात करनी है समाधान की, कि इसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं। इन समाधानों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल बातचीत को थोड़ा सा विराम लगाते हैं, कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, उसके लिए रुकेंगे और एक गीत श्रोताओं को और सुनवाएंगे उसके बाद।
1: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
2: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
1: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
7: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
6: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
7: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
6: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.

आकाशवाणी धर्मशाला के माध्यम से समय आप सुन रहे हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच, जहां बात होती है आज की, कल की और हमारे युवा दोस्तों के भविष्य की। साथ ही साथ हम बात करते हैं उन विषयों पर जिन पर जानकारी बेहद जरूरी है। आज का विषय भी कुछ ऐसा है, प्रवासी पक्षियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। बदलते जलवायु का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। बातचीत को श्रोताओं हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे। आकाशवाणी धर्मशाला इस मदर्स डे के अवसर पर यानी मातृ दिवस के अवसर पर लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम, माँ मेरे दिल की आवाज। क्या आप अपनी माँ के लिए कोई संदेश, शुभकामना या प्यार भरा समर्पण भेजना चाहते हैं तो अपने दिल की बात हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल यानी 10 मई रविवार को सुबह 8:30 से 9 बजे तक, और आप अपना संदेश भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर रहेगा 9914172223। नंबर एक बार फिर से नोट करें, 9914172223। 9914172223 ये व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आप अपना संदेश इस कार्यक्रम के लिए भेज सकते हैं। आपका संदेश विशेष रूप से इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जा सकता है ताकि आपकी आवाज़ पहुंचे आपकी माँ तक प्यार, सम्मान और कृतज्ञता के साथ। तो देर किस बात की, इस मदर्स डे अपनी माँ को बताइए कि वे आपके लिए कितनी ख़ास हैं। आकाशवाणी धर्मशाला, आपकी भावनाओं की आवाज़। कार्यक्रम युवा मंच में सभी युवा दोस्तों का, श्रोताओं का स्वागत एक बार फिर से हम करते हैं। और बात कर रहे थे श्रोताओं हम के समाधान इसके लिए क्या हो सकते हैं, बदलती जलवायु के जो बदलते घातक परिणाम हमारे प्रवासी पक्षियों को झेलने पड़ रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक बनना है। छोटे छोटे कदम जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, या तो आप कोशिश करें कि प्लास्टिक का उपयोग करें ही ना, और पेड़ लगाने की कोशिश करें, ऊर्जा की बचत करें, ये सब मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दूसरा, वेटलैंड्स और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करें। सरकार और समाज मिलकर अगर इन क्षेत्रों को संरक्षित करें तो प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित स्थान मिल सकता है। तीसरा, साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग। आजकल सैटेलाइट ट्रैकिंग के माध्यम से पक्षियों की यात्रा को ट्रैक किया जा रहा है, इससे हमें उनके व्यवहार को समझने में मदद मिलती है और हम बेहतर संरक्षण नीतियां बना सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी, युवा शक्ति की भागीदारी। हम युवा जो हैं वो इस बदलाव में बहुत बड़ी एक ताकत साबित हो सकते हैं। अगर युवा आज जागरूक होंगे तो कल की धरती सुरक्षित होगी, खुशहाल होगी। इसके लिए और भी ज़रूरी है कि जो हमारे प्रवासी पक्षी हैं उन्हें हम आसमान पर उड़ते हुए देखना चाहते हैं तो हमें जीतोड़ इसके लिए मेहनत करनी होगी।

तो श्रोताओं, जितना भी आप कर सकें इस विषय पर, इस विषय से संबंधित जागरूकता जितनी आप फैला सकें और इस विषय पर जितना आप सहयोग कर सकें, वो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए भी और इन सुंदर पंखों वाले हमारे मेहमानों के लिए भी। तो अगली बार जब आप आसमान पर उड़ते पक्षियों को देखें तो सिर्फ

0: की सुंदरता को ना देखें, उनके संघर्ष को भी समझें, क्योंकि उनकी उड़ान में छिपा है हमारी धरती का भविष्य। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही, बातचीत को हम यहीं पर विराम लगाएंगे और आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी कार्य हम करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी होती है। कभी भी ये ना सोचें कि कोई दूसरा करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हम खुद से शुरुआत करते हैं तो क्या पता हमारी देखा देखी और लोग भी ऐसे के प्रति जागरूक हों और आगे बढ़े। और सबसे ज़रूरी बात है, याद रखिए, प्रकृति है तो हम हैं, और अगर प्रकृति का संरक्षण हम करते हैं तो इस तरह से पर्यावरण का संरक्षण तो होता ही है, साथ साथ इन प्रवासी पक्षियों को भी हमारी ओर से एक छोटी सी मदद मिलती है और हमारा अपना जीवन भी खुशहाल बना रहता है।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की, जो हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद आकाशवाणी शिमला से आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। 6:06 पर सुनेगा सदाबहार संगीत। 6:30 पर कार्यक्रम मौजा गराइंदियां प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में आज जानकारी दी जाएगी जंगलों को आग से बचाएं इस विषय पर। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप समाचार सुनेंगे। 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर किसान बागवान भाई बहनों के लिए लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा गर्मी के मौसम में पशुधन की देखभाल। साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में भेंट वार्ता भी शामिल की जाएगी और किसान बागवान भाई बहनों का मनोरंजन किया जाएगा लोक संगीत के साथ। 7:42 पर एक बार फिर आकाशवाणी शिमला आपके लिए चलेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए। 8:00 आनंद लीजिए का

सुनेंगे सभा के अंत में समाचार, जिनमें 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार शामिल होंगे। ये थी कार्यक्रम विवरण में जानकारी हमारी सभा में शेष कार्यक्रमों की, जिन्हें हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किया जाएगा। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। ठीक 6 बजे कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्षमता निर्माण सुदृढ़ीकरण के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित करने के भी निर्देश दिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी इस मौके पर मौजूदगी दर्ज की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है और कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया करने का काम किया है। मंडी में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है। सौदान सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर आम जनता के साथ धोखा किया है। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस जिन झूठी गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी, वही गारंटियां आज जनता के दिलों में पीड़ा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनरों सहित हर वर्ग कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान है। प्रदेश के शहरी निकायों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन नगर निगम के तहत गंज बाजार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 3.5 वर्ष की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है और इन चुनाव में सरकार की नाकामी ही सबसे बड़ा मुद्दा है।
1: नगर निगम के चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उनके लिए मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है। और सीधी बात है इसमें कि प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष की जो असफलताएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो अपने आप में मुद्दा है। शहर में मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और झूठ बोल करके कॉरपोरेशन में भी आई थी।
0: दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं कल 10 मई जबकि शिमला से धर्मशाला के लिए सोमवार 11 मई से शुरू होने जा रही हैं। दिल्ली शिमला हवाई सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन जबकि शिमला से धर्मशाला के लिए मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में महासू आर्ट की वार्षिक कला प्रदर्शनी आज शुरू हुई। 14 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने कैनवास पर

0: रंगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक मुद्दों को उकेरा है, जो सराहनीय है। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के अपनी ही सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वे इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगी।
1: कमला नेहरू हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया था कि जो विमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, उसकी केयर करनी है, और आज भी इसी के लिए जाना जाता है। जब कोई महिला आती है, प्रसूता होनी है, उसने बच्चे को जन्म देना है, तो उसको रेफर किया जाता है कि आप कमला नेहरू हॉस्पिटल जाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन कहीं और तब्दील होगा तो स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी। तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज है वो सरकार से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेगा वो सबको मान्य होगा।
0: भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पार्टी कार्यालय के अनुसार धर्मशाला नगर निगम में 5 जबकि नाहन नगर परिषद में 1 प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम के प्रभारी हरिकृष्ण हेमराल ने आज अन्य सदस्यों के साथ कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वॉर रूम का मुख्य कार्य फील्ड में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित अपडेट करना, दैनिक आधार पर चुनाव प्रचार से जुड़ी रिपोर्ट लेना और पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों को उन तक पहुंचाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो।
4: कहाँ?
3: एडमिशन कराने।
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के
9: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। अब आनंद लीजिए सदाबहार संगीत का।

0: प्यासा सावन, जी हाँ, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत इस ब्रेक के बाद।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
4: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ

0: मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
0: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
2: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
5: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
6: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
5: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
2: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
7: सदाबहार संगीत कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर मुकेश के युगल स्वरों में पत्थर के सनम फिल्म से ये गीत, जिसे मजरू सुल्तानपुरी ने स्वरबद्ध किया है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
4: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। टीएनसी अप्लाई।
5: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप जुड़े हुए हैं और सदाबहार संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले श्रोताओं के लिए एक बेहद खास सूचना। आकाशवाणी धर्मशाला इस मदर्स डे के अवसर पर लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम, माँ मेरे दिल की आवाज। क्या आप अपनी माँ के लिए कोई संदेश, शुभकामना या प्यार भरा समर्पण संदेश भेजना चाहते हैं तो अपने दिल की बात हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 10 मई यानी कल रविवार को सुबह 8:30 से 9 तक। और जिस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजना है वो नंबर है 9914172223 यानी 9914172223। नंबर एक बार फिर से सुने, 9914172223 ये नंबर है। आपका संदेश इस विशेष कार्यक्रम में प्रसारित किया जा सकता है ताकि आवाज आपकी पहुंचे आपकी माँ तक प्यार सम्मान और कृतज्ञता के साथ। तो देर किस बात की, आप इस फोन नंबर के माध्यम से अभी मैसेज करें, इस मदर डे अपनी माँ को बताएं कि वे आपके लिए कितनी खास हैं। आकाशवाणी धर्मशाला, आपकी भावनाओं की अपनी आवाज। सदाबहार संगीत कार्यक्रम में अब एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म का, ये गीत है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल और ये संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार संगीत आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजां गराइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां सुना करदे सारे किसान कने बागवान भाई भैणां दा स्वागत कने कार्यक्रम दे सारे स्रोतियां दा स्वागत टियाले पर कने अज टियाले पर मौजूद मैं यानी रसीलू राम कने मेरे सोगी
1: चुनीताई
0: जी चुनीताई तां तुहांजो राम राम कने सारे दा स्वागत कने तुहाड़ा भी स्वागत
1: धन्यवाद जी बहुत बहुत स्वागत
0: जी। तो दिखा चुनीताई आज कल जेड़ा गर्मी का मौसम है ना जी,
1: हाँ जी, जी।
0: दस्तक खूब देती पर फिर भी कुछ एक सह बोला है हंजो थोड़ी ठंडक भरा माहौल जेड़ा सह दिखने मिला है ना जी, क्या कि बदल बार बार जेड़ा सह है ना गरजा दे उमड़ी उमड़ी के आवा दे
1: पता नहीं लगा था मौसम हाँ, दा कि गर्मी होनी है कि ठंड होनी है
0: बिल्कुल मौसम दा तो पता नहीं लगा था कि अगले पल क्या होना है ना जी। तो दिखा जी दे मौसम बच्चे थोड़ी देई एहतियात तो रखनी है चाहे सह खेतीबाड़ी का काम करना तो हाँ या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना तो तुहानू थोड़ी एहतियात रखने की जरूरत है ना जी, क्योंकि बदल का मौसम जेड़ा सह थोड़ी समस्या उत्पन्न करी सकता है ना जी। तो इस बीच दिखा जी जियां कि अहां गल करा दे कि अजकल गर्मियों का मौसम है तो भाई दिखा जालू जालू गर्मी पौंदी ना चुन्नी ताई,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ता आहां सोचदे के चला भाई ठंडी देइए जगह ही चलदे आ ना जी,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: घूमना चली जांदे या फिर आहां जियां पड़ोसी राज्यां दी गल करिए तां साढ़े हिमाचल दे बखे होंदे आ ना जी,
1: हाँ जी,
0: पहाड़ां दे बखे जांदे ताकि ठंडियां ठंडियां वादियां च आहां रहन कने सुकून दे पल गुजारन, पर दिखा जी आहां तुहां इत्थे रहिंदे आ ना जी, तां आहां तुहां भी जिहड़ा सह सुकून भरी सांस ताईं ले सकदे अगर हाँ जो एक अच्छा वातावरण मिल रहा है ना जी, कने अच्छा वातावरण ताई मिली सकदा चुन्नी ताई अगर सांझवाल धरती हड़ी हरी भरी हो है ना जी, गाने का मतलब ये है कि हरी भरी हरियाली होवे सारे तरफ कने पेड़ पौधे

0: खूब होन ताकि अहाँ गर्मी दे मौसम बिच ठंडी ठंडी जगह बेह के थोड़ा जहा आनंद
1: आनंद
0: जेड़ा
1: जरा सा
0: सै
1: ले
0: ले
1: लैन।
0: सकन।
1: हाँ जी हाँ जी
0: कने दिखा अजकल अहाँ दिखते जियाँ सोगी सोगी गर्मियाँ लगदियाँ तो अहाँ ये भी दिखते कि कई जगह हाँ जो अग वगैरह भी दिखने मिलती जियाँ घर ते हाँ जो लगी जाता को फलानिया जगह फाणी फलानिया पहाड़ियाँ पर जड़ा सा अग
1: आग
0: लगी
1: लगी
0: हो
1: है।
0: है ना
1: हाँ जी
0: जी।
1: हाँ जी
0: तो दिखा जी ये सारिया चीज़ा जड़ा सा हाड़िए थोड़ी थोड़ी दी सह बोलते ना कि सोच की कमी दे कारण होंगे है ना जी।
1: हाँ जी हाँ
0: कई
1: जी
0: बंदे तो ऐसे होंगे कि भाई थोड़ा जहा सुखा दिखे नहीं कहना चल भाई अग लगाई थी है ना
1: हाँ
0: कहें कि
1: जी
0: मजा आना भाई अग्गी दिखने का है ना
1: इन
0: जी।
1: बड़ी ज्यादा घटना दिखने
0: हाँ
1: मिलती ना।
0: बड़ियाँ ज़्यादा घटनियाँ दिखने मिलदियाँ तो अहाँ यही बोलना चाहेंगे कि भाई दीदियाँ जड़ा भी काम काज जड़ा शरारती तत्व तेदा काम कर देता तो इन्हें नहीं करना चाहिए।
1: कहीं रोकथाम होनी
0: हाँ
1: चाहिए।
0: बिल्कुल रोकथाम होना चाहिए क्या ना दिखाई सरकार की तरफ से भी इसो लगाम लगाने ताई कई प्रकार के जुर्माने सजा दे तौर पर भी कई प्रकार दियाँ प्रावधान हैं सरकार की
1: हाँ
0: तरफ
1: जी
0: से।
1: हाँ जी
0: तो अगर पकड़ा च कोई आई है तो तुहानू पता ही है फिर इसे कितना जुर्माना होना कहना सज़ा भी हो सकती।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो इन सारिया चीज़ों पर शरारती तत्वों जड़ा सा बिल्कुल सचेत रहना चाहिए कहना दे कम नहीं करना चाहिए कहना ज़्यादा तो ज़्यादा हो सकता तो सो जो बण है नहाड़े तिन्हें अग्गी ते बचाने
1: बचाना
0: के
1: चाहिए।
0: प्रयास करना चाहिए।
1: हाँ जी हाँ जी क्योंकि ये जड़ियाँ जानकारियाँ साढ़े वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं।
0: बिल्कुल
1: रसीलू राम जी दिसों दिखा कि साढ़े प्रदेशे बीच प्रकृति ने बना दी अपार संपदा प्रदान की
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: जेड़ी कि इत्थों दे पर्यावरण जो साफ सुथरा बनाई रखने च बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान तां दिंदी है। इस दे अलावा अलावा जल स्रोतां जो बनाए रखने दे अलावा बाढ़ कने सुखे ते भी बचांदी है।
0: हाँ बिल्कुल अच्छी गल गलाई तो हाँ क्या कि दिखा जी सह दिखते भी हैं कि जिथु जिथु रुख लगी हो ना
1: जितु
0: भूमि
1: तो हर
0: कटाव जड़ा सह बिल्कुल
1: नहीं
0: घटते
1: हो।
0: घट होंगे
1: हाँ जी
0: कहना अहाँ तो यह भी सलाह देंगे कि दिखा जी आने वाले 1 ना 2 महीने बाद जड़ा सह है ना जी बरसात भी आई जानी तो अगर थोड़े जमीन च या नदी नाली ने कंढे ज़्यादा तो ज़्यादा तो हाँ रुख लगान तो अपनी जमीने जड़ा सह तो हाँ भूमि कटाव से जड़ा सह बचाई
1: दूई
0: सकते।
1: गल पशुओं वास्ते चारा हो जाता
0: हाँ
1: इमारती
0: पशुओं
1: लकड़ी हो जाती बालन
0: हाँ
1: हो
0: हाँ
1: जाती
0: हाँ
1: घर बन औषधियां तक थो गली मात्र
0: बड़ी
1: सब।
0: वधिया गल गलाई तो हाँ बड़ी छैल गल गला दे दिखा जी। एक रुख लगाते तो इसके कई फायदे होंगे
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी
0: जरूरी नहीं है कि भाई अहाँ जड़ा सा छाँव वास्ती लेना है या मतलब अहाँ शुद्ध हवा ता ही लेना है दिखा जी इमारती लकड़ी अहाँ इन्हें ते ले लेंदे है ना जी। हड़े
1: बालन
0: पशु हड़े भेड़ बकरियाँ सारियाँ इन्हों का यानी कि खाना इन्हें मिलता है ना जी।
1: हाँ
0: और
1: जी
0: कई प्रकार के हड़े छोटे ग्रामो उद्योग हैं इन्हों ने चलो जियाँ
1: चलो।
0: अगर तुम तूतान की फसल लगाते हैं तो दिखे रेशम कीट भी पाली सकते हैं ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी हाँ जी
0: कने सह बोलते ना कि और खिड़क वगैरह हो धम्मण वगैरह हो ये तो सह बोलते ना कि हड़ियाँ भेड़ बकरियां दे बड़े भारी चाय ने खानी है इन चीज़ें
1: हाँ
0: तो दे रुख तो हाँ लगान ता एक तो थोड़ा रोजगार भी बढ़ना है ना जी। तो
1: हाँ
0: हाँ
1: जी
0: बकरियां भी पाली सकते और दे सोगी सोगी पर्यावरण भी साफ रहना कहना गलाने का मतलब सही है कि भाई जिथू जिथू हरियाली है धरती है पर उत्थी तो खुशहाली फिरी होनी है कहना सह बोलते ना हरियाली ही खुशहाली लाँदी तो हाँ जो प्रयास यही करने चाहिए चुनी ताई कि ज़्यादा तो ज़्यादा रुख लगाना चाहिए कहना जेड़ा कि अहाँ पहले भी गला दे कि गर्मियों का मौसम है भाई दे कोशिश नहीं करनी है तो हाँ के अग वगैरह लगा देना जिथे भी
1: दूई गल जी
0: बना
1: है।
0: च
1: हाँ
0: है ना
1: जी
0: जी।
1: है
0: तो
1: साढ़े
0: त्यौहार
1: पर्यटक
0: चीज़ें
1: आते हैं
0: हाँ
1: सभी चांद की सभी जागरूक रहन जे आते
0: हाँ
1: स्थानीय नागरिक तो जागरूक ही रहन पर जेड़े पर्यटक आते हैं सभी जियाँ
0: हाँ
1: आगू लाइन दे सेकड़ा
0: दिखा जी
1: लटकाते
0: पर्यटक सह तो मैं तो जो पहले ही दसी था कि सरकार की तरफ से कई ऐसे अजकल तो दिखा जी तो हाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो ना जी
1: हाँ
0: पता नहीं
1: जी
0: कूनी बंदा कुतू तो पकड़ा चाहिए ना।
1: हाँ
0: तो गलाने का मतलब यही है कि थोड़े सचेत रहन भई सारे ही है ना जी सह चाहे घरे का चाहे बाहरे का है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: के एक बारी पकड़ा चाहिए तो भाई सारी भरपाई जड़ा सह तन जो पता ही है फिर इसे टपरू भी की जाने बोलते हैं ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो इन सारिया चीज़ों से बचना पौना कने थोड़ा जहा सजग रहना कने ज़्यादा तो ज़्यादा इस कम्मे ते दूर रहने के बना जो किसी भी प्रकार की हानि होवे कने एक होर गल जड़ा सारे ते बड़ी अहाँ जड़ा भूली है दिखा जी कई प्रकार के जानवर होइए है ना जी चिड़ियाँ पखेरुआ अपने घर पाए होंगे रुखा पर है ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी हाँ जी
0: तो जालू अहाँ देना कोई कुकृत्य कर देना ना जी कोई
1: हाँ
0: गलत काम कर देना तो कई जिन्ह दे सह बोलते ना कि तिन्हें नस्लां खत्म हो जानी है ना
1: हाँ जी
0: जी।
1: हाँ जी
0: चिड़ू पखेरुआ दियाँ जानवर अजकल दिखा दे अहाँ के सह जीजू कंडू भी जड़ा तुहानू पता है एक जमीना दे एक तिना दा घर ही है सारे दा ही है ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी हाँ जी
0: कहना जालू अहाँ दे दी चीज़ा करीं दे अग वगैरह लगाइंदे तो इन्हें सारे घर तो

0: जड़ते ही है ना, सोगी सोगी ना दी सह बोलते ना कि नस्लां भी खत्म हो जाए। तो यह सारिया चीज़ा भाई ध्यान च रखनिया, कहने दे काम नहीं करना, कहने दे काम करना भी दी सोचा दे भी है ना, तभी दूर रहना ताकि किसी प्रकार की तुंजो भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो अगे जाके, है ना जी।
1: इसी वास्ते साड़ी सरकार प्रदेश सरकार अग्नि प्रबंधन टास्क फोर्स बनाई हुई है
0: जी जी,
1: वन अग्नि नियंत्रण करने वास्ते, रोकथाम वास्ते साड़ा वन विभाग विभिन्न स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने वास्ते वन अग्नि संवेदनशील महीने च बैठकां कने प्रशिक्षण कार्यशाला जो चलांदा है
0: जी। दिखा जी ये तो है सरकार की तरफ से किए गए काम, पर जी कि हांजो तुहांजो सारे जागरूक रहना पौना ना जी, कहने दे दें कमां ते अगर तुहांजो लगता है कि किसी शरारती तत्व ने ऐसा कुछ कर ही भी दिता है, तो अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करने के जल्दी तो जल्दी उस पर काबू करना, कहने ज़्यादा तो ज़्यादा बजाने का प्रयास करना, ताकि कोई किसी प्रकार की ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो, है ना जी। तो चुनी ताई दिखा गल्लां बातां सांझे लो होर भी हैं, करते रहना हाँ ना जी गां जिक्र, पर थोड़ा जिहा हाँ मनोरंजन भी करना, सुनने कुछ एक संदेश कने फिर
1: जानकारी
0: जी जी।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जी चुन्नी ताई सुनिया अहाँ ए लोक गीत कने दिखा
1: बड़ा मजा
0: जी,
1: आया।
0: बड़ा मजा आया कने ऐसा बोल देना कि हूँ तो दूर दूर तक रेडिए जो हड़े आकाशवाणी धर्मशाला जो सुनिया जाता कने, मैं समझदा कि कोई भी हड़े ऐसे स्रोता जेड़ा दूर दराजे या क्षेत्रों में हाँ जो सुना दे होंगे तो बिल्कुल एक जुड़ाव दे अधीन महसूस
1: सच
0: होया
1: बात,
0: होना है
1: बिल्कुल
0: ना जी
1: बिल्कुल। हाँ
0: अपने हिमाचल कन्नै कने। दिखा जी करनैल राणा होर गया है, बड़ा
1: गाना
0: भारी प्यारा जहा लोक गीत।

0: हाँ ना जी,
1: ਨੇ
0: ਦਿੱਲੀ ਉਹ
1: ਬੜਾ
0: ਛੂਹਣੇ
1: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ
0: ਵਾਲਾ
1: ਲਿਆ
0: ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
1: ਉਹਨੂੰ।
0: ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਗੀ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਖਾ ਜੀ ਚੁੰਨੀ ਤਾਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ,
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਆ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੈ ਆਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਬੱਚੇ ਤਾਈਂ ਕਿਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
1: ਸਹਿ
0: ਕਹਿੰਦਾ
1: ਕਿਤਨਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ
0: ਹਾਂ
1: ਹੈ,
0: ਕਿਤਨਾ
1: ਕਿਤਨਾ
0: ਤਿਆਗ
1: ਸਮਰਪਣ
0: ਕਰਦੀ,
1: ਕਰਦੀ,
0: ਜਾਗੀ
1: ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ
0: ਜਾਗੀ
1: ਜਾਗੀ
0: ਜਾਗੀ
1: ਕੇ
0: ਕੇ
1: ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ
0: ਇੱਕ
1: ਹੈ,
0: ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੈ ਨਾ
1: ਹਨਾ,
0: ਛੋਟੇ
1: ਕੀ
0: ਛੋਟੇ।
1: ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
0: ਜੀ, ਤਾਂ ਮਾਊ ਦੇ ਸਹਿ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਆਹਾਂ
1: ਉਹ
0: ਤੁਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
1: ਨਾਪੀ
0: ਮਤਲਬ
1: ਨਹੀਂ
0: ਕੋਈ ਵੀ
1: ਸਕਦੇ,
0: ਨਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
1: ਉਹਨਾਂ
0: ਚਾਹੀਦਾ
1: ਦੇ
0: ਹੈ ਨਾ
1: ਪਿਆਰ
0: ਜੀ।
1: ਜੋ ਕਦੀ ਨਾਪੀ ਸਕਦੇ
0: ਜੀ
1: ਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਜੀ 10 ਮਈ ਯਾਨੀ ਕਿ
1: ਕੱਲ੍ਹ
0: ਕੱਲ੍ਹ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਆਹਾਂ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਮਾਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਆਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਤੱਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਤੱਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਵਟਸਐਪ ਹੈ ਨਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ,
1: ਵਟਸਐਪ
0: ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀ ਦੇਈਏ 9991712233 है ना चुन्नी ताई, एक बारी टेलीफोन नंबर तो हाँ अप बोल दिया एक एक करके।
1: 9914172223
0: जी, इस नंबर पर तो हाँ भ्यागा 8:30 ते लेके 9 बजे तक जेड़ा सा सांझो व्हाट्सएप मैसेज करने, कहना जो भी तुसा अपनिया मम्मिया जो गलाना चाहते सह तो हाँ लिखी सकते, कहना हो सकिया
1: तो
0: अहाँ इस
1: तुहाड़ा ही
0: कार्यक्रम
1: नंबर
0: के माध्यम ने तुहाड़िया मम्मिया तिकर तुहाड़ी गल जेड़ा सा जरूर पहुँचाने
1: पहुंचाएंगे
0: है ना जी। टाइम तुहानू दसी देिए कल
1: 8:30
0: भ्यागा 8:30 बजे ते लेके
1: नौ
0: नौ
1: बजे
0: बजे
1: तक।
0: तक, कहना दिखा जी कई बारी पेंसिल कॉपी लेके हड़े स्रोता नहीं बैठे होंगे चुन्नी ताई है ना जी, तो मैं समझता कि इस वक्त तिना पेन कहना पेंसिल
1: कड़ी
0: जरूर ले
1: ली।
0: ली होनी,
1: हाँ जी हाँ जी
0: कहना एक बारी फिरी ते तुसा एक एक करके टेलीफोन नंबर दस दिया कि व्हाट्सएप करने का नंबर कौन जे है।
1: तो जेड़ा तुम व्हाट्सएप करना है नंबर से है 9914172223।
0: हाँ जी, कहने भी से तो तुहानू दसी था कि मातृ दिवस पर कुछ भी तुसा अपनिया मम्मिया जो बोलना चाहेंगे हाड़े माध्यम दें तो तुहां सह सह चीज़ां लिखनियां ने, कहने अहाँ जरूर कोशिश करनी कि तुहाड़ियां मम्मिया तक तुहाड़ी
1: थोड़ी
0: गल
1: गल
0: जिहड़ा सह
1: पहुंचानी।
0: पहुँच जाए है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: कहने इसी सोगी हुण अहाँ फिरी ते चुन्नी ताई चलना अपने खेत खलिहाण की तरफ, कहने गल करनी कि दिखा जी हुण जालू हाड़े खेत खलिहाण खाली होए ना है ना
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: तो इस वक्त सारे ते जरूरी चीज़ जिहड़ा अहां अपने किसान साथियों बोलते कि अगर तुहांजो समय है तो इसका सदुपयोग तुहां कर सकते, कहना कोशिश ये कर सकते कि तुहां अपने खेत की मिट्टी की जिहड़ा परीक्षण इस
1: करवाई
0: वक्त
1: लैन।
0: करवाई लैन।
1: हाँ
0: जी,
1: जी हाँ जी
0: मिट्टी परीक्षण करवाई के तुहांजो कई तरह के फायदे होंगे, जियां कि अहां बार बार बोलते रहेंगे कि तुहाड़ी मिट्टी की गुणवत्ता का तुहांजो पता
1: पता
0: लगी
1: चलता
0: आंदा,
1: है। हाँ
0: कौना
1: जी
0: पोषक तत्वों की कमी
1: कमी
0: है,
1: है।
0: कौना
1: हाँ
0: की
1: जी
0: अधिकता है तुहाड़ी खेते विच,
1: हाँ जी हाँ जी
0: इन सारिया चीज़ों का पता लगी आंदा, ता ही फिर अगली फसल तुहां लगानी है तो उसी हिसाब ने उन्होंने चीज़ों का प्रयोग जड़ा सा तो हाँ
1: करी
0: करना
1: सकते।
0: है ना
1: हाँ जी
0: जी।
1: हाँ जी
0: कहना सह बोलते ना कि हूँ जड़ा अगले धान वगैरह लगाने ने या किसी भी प्रकार की कोई सब्जियां लगानी
1: सब्जियां
0: चुन्नी ताई,
1: लगानियां ने। हाँ जी हाँ जी
0: तां तिना वास्ती तां हाँ बार बार बोलना चाहेंगे कि भाई अच्छा बीज प्रयोग करने हो, कहना जड़ा तुहाड़े खेतर ताई अनुमोदित कितनियां किस्मां ने वो
1: वही
0: ही तुहां
1: लगानी
0: प्रयोग
1: है।
0: करनी है ना, कहना ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करनी है कि बीजो उपचार करना या फिर उपचारित बीज ही तुसा जड़ा सा लैने, कहना खेत विच प्रयोग जड़ा सा तुहां करने।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तां दिखा जी चुन्नी ताई फिरी ते छोड़ा दिया विराम,
1: कने एक सुनना
0: सुनने संदेश
1: संदेश।
0: कने फिरी ते लोकगीत।
2: माई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा, इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में, साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
3: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस, आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
4: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
5: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
4: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
5: Experience luxury with a panoramic.

0: sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए

खेतीबाड़ी करा श्रोतियों कने खुश रहा। इस कने साढ़े कार्यक्रम का समय इतों ही संपन्न होता है। दसी दी कार्यक्रम जो तकनीकी सहयोग दिता अंकित धीमान ने, कार्यक्रम प्रस्तुत करता जितेंद्र पाल सिंह, उंटियाले दे रसीलू राम, कने चुनीताई जो दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा गराई दिया। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है कुछ ही देर में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: थे अलावा 11 मई
2: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलकवेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी

0: कार्यक्रम किसान बाणी लेके एक बारी फिर ते हाजिर है। मैं चुन्नी ताई कने मेरे कन्ने टियाले प्रसाद दया देन रसीलू राम जी। ता रसीलू राम जी तो जो भी राम राम कन्ने एक बारी फिर ते टियाले पर बैठे हो, जड़े भी ग्रां च बैठे हो तिना सारे श्रोतें जो साड़ी दो हाथ जोड़ के राम राम।
1: बिल्कुल जी, राम राम ताई, राम राम। कने दिखा ताई, बड़ा अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, कने सौगी सौगी भाई संझा दी बेला ना जी। हालांकि बदल अज दिन भर बड़े भारी रे, पर हुण जेड़ा ए लाल
0: मौसम
1: लाल रोशनी सांझो सुझा दी ना जी दूर, बड़ी
0: हाँ
1: भारी सुहावनी लगा दी। कने टियाले दा जेड़ा खुशनुमा माहौल बने सह तो भाई कुसी ते छुपया नहीं, कने ना ही तो छुपदा, कह कि रुण झुण भी अहां जेड़ा सह टियाले दे माध्यम ने लगानी।
0: कंधका। हाँ सारे हो रेडियो सेट पर बैठे होने कने साड़ी रौनका
1: हाँ
0: सुनते हैं, कोई रोटियां
1: बिल्कुल
0: बना दा होंदा, कोई
1: बिल्कुल
0: गप्पा मारा दा
1: बिल्कुल
0: होंदा,
1: जी
0: कोई
1: जी
0: पशु धन दी देखभाल करा दा होंदा।
1: हाँ बिल्कुल। कने दिखा जी संजय दी बेला है, कने मैं गाय भी दूनी है आना ना जी।
0: हाँ जी हाँ जी
1: ता ए ता भाई चीज सोगी सोगी, मैं तो बोलदा कि हड़िया गाय में आई हूँ भी आदत पे यही होने लोक गीतां सुनने दी है ना।
0: बिल्कुल जी
1: कह कि सब बोलते ना कि जालू जालू हड़ा किसान दुधे दोना बैठ दे, कने सर लोक गीत लाए होंगे। तो मैं तो बोलता भी गाय में भी थोड़ा जहा दुध ज़्यादा ही दिनी होनी है ना
0: हाँ
1: जी।
0: जी हाँ जी
1: तो इतनी मिठास है हड़िया लोक गीतां च।
0: हाँ जी
1: कने सोगी सोगी अहाँ अजकले की गलबात करिए तो भाई, जियां कि अहाँ पहले भी गल करा दे हे कि हुण हाड़े खेत जियां कि निचले खेत्र के किसान हैं तिना दे खेत भी खाली है ना।
0: खाली है ना।
1: हालांकि कुछ एक खेत्र ऐसे न ऊपरी इलाके जिन्हें च
0: हाँ
1: कणक अल्लै भी खड़ोती है,
0: जी हाँ
1: पर
0: जी
1: दिखा जी आने वाले थोड़े दिनों तिना भी पकना, कहना सारे खेतों तिना भी बेले आना। तो इस जालू बेला का मौसम होंगे तो भाई कुछ एक हांजो काम करना कर लेना चाहिए, जियां कि अहां पहला गला देख के मिट्टी परीक्षण होई है ना जी।
0: हाँ जी हाँ जी
1: सोगी सोगी होर ऐसे काम जियां अहां तो हाँ जड़ा भी कणक वगैरह अहां निकाली है तो त्याही धो तो आई है ना जी,
0: हाँ साफ
1: सकाई,
0: सफाई
1: ये सारे
0: सफाई
1: काम कार हड़े किसान साथियां करने भाई। तिन्हें हंजो दसना नहीं पौना कि कालू कालू तो हाँ करने ना, जालू तो बखिलनी देना, कणक
0: तालू
1: भी धोनी है ना जी।
0: हाँ सुकानी बनानी
1: हाँ
0: कने रखनी।
1: जी जी तो ये सारिया गल्लां बातां तां चली रहनियां है ना जी,
0: हाँ जी
1: सारे
0: हाँ
1: करदे ही हैं। पर उन्हां किसान साथियों मैं कुछ अपनी तरफ ते बोलना चाहूँगा, जिहड़ा किसान साथी व्यावसायिक तौर पर अपनी
0: खेती
1: खेती जो करदे
0: करते
1: हैं
0: हैं।
1: है
0: हाँ
1: ना
0: जी हाँ
1: जी,
0: जी
1: जिहड़ा कणका जो गाय के जिहड़ा बेचदे हैं है ना जी,
0: हाँ जी हाँ जी
1: कहना आर्थिकी भी कमांदे, तां तिन्हां किसानें अहां बोलना चाहेंगे कि भाई काली नहीं करनी
0: हाँ
1: है
0: जी
1: ना
0: हाँ
1: जी।
0: जी
1: सरकार द्वारा
0: रेट होंगे
1: जड़ा घटते घट रेट तो बेचने के निर्देश दिते जाते, उन्हों का पालन करना, कहना यह नहीं है कि बिचौलिए जो ही फायदा तो हाँ जड़ा सह
0: देना है।
1: देना। कहना इस वक्त तो दिखा जी 2200-2300 रुपया कणका का रेट सुनने
0: वही
1: च आया
0: हाँ
1: ही है
0: हाँ
1: चुन्नी
0: जी
1: ताई,
0: हाँ
1: पर दिखा जी अहाँ इस चीज़ें नहीं बोलते कि पक्का रेट यही है, पर फिर भी ऐसा ये जरूर बोलना चाहेंगे कि इस वक्त थोड़े घर जड़ा ऐसा तो बोरू भरे होने तो इं नहीं है, तेजी वास्ते तो 5-6 महीने
0: इंतजार करिए। हाँ
1: इंतजार कित्या है ना जी,
0: जी हाँ जी
1: कहना तो मेहनत की बड़ी भारी, तो इस वक्त जालू तो बेचनी है अपनी फसल तो बिल्कुल काली नहीं करनी है, कहना
0: अपनी
1: थोड़ा
0: मेहनत का फल
1: जहा
0: लेना है।
1: हाँ अपनी मेहनत का फल लेना है, कहना ता ही ले सकते तो हाँ थोड़े देर जागरूक रही कि ऐसा नहीं है कि पड़ोसी राज्यों के व्यापारी आंदे भाई है ना,
0: सब ही ले आते हैं,
1: तो दिखा जी इं ही ले आते
0: मेलियां च
1: जालू।
0: भी अनाज
1: हाँ
0: मंडियां लगदियां हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो सह आंदे कने भाई जालू जे 21 बंदे दिती नहीं, कने सह आंढी गुआढ़ी बोलते भाई इदिया ले तो मैं तो रे ही
0: हाँ जी
1: आना जी, ना सह फिरी दाम
0: अच्छे
1: वगैरह
0: मिलते
1: दे अच्छे मिलते, तो सह चीज़ां दा ध्यान रखना, कने अपनी मेहनत इं जाया नहीं करनी,
0: करनी। हाँ जी
1: ज़्यादा तो ज़्यादा जागरूक रहना, कने मोल भाव करी के ही जड़ा
0: जी
1: सह अपनी उपज जड़ा तो हाँ
0: बेचनी है
1: अगर बेचनी है ना जी, ताकि
0: ताई
1: तो जो फायदा ते फायदा
0: फायदा होए।
1: मिलना है
0: हाँ
1: ना
0: जी
1: जी।
0: हाँ जी
1: तो ये सारिया चीज़ें हालांकि हड़े सारे स्रोता जड़ा ना हड़े सारे किसान जड़े सह जागरूक हैं, पर फिर भी एक टियाले दी रीत जड़ा अहाँ मनाई हो ना जी, कुछ
0: जेड़ा
1: ना
0: हाँ
1: कुछ
0: जानकारी
1: अहाँ
0: देनी होंगी
1: जानकारी देनी होंगी, कुछ ना कुछ गल्ला अहाँ अपने साथियों ने करनी
0: हाँ
1: होंगे, ते अहाँ रीतें नवादे कहना नवादे भी है ना जी।
0: जी हाँ जी
1: तो एक होर रीत जड़ा है हड़े टियाले की चुन्नी ताई त्यौहार निभाने का भी टाइम जड़ा सह आवा दा, एक लोक गीत सुनने का बेला आवा दा, तो आवा सुन दे लोक गीत।

0: जी चुन्नी ताई, तां इस लोकगीते बाद गल करनी अहां अजकले दे मौसम दी। तां दिखा जी, अजकले दा जेड़ा मौसम है, गर्मियां दा मौसम है, कन्नै गर्मियां दा मौसम जालू होंदा तां कई प्रकार दी समस्या भी सौगी सौगी लेके आउंदा, कहें कि कई प्रकार दियां बीमारियां होई गईयां, कई प्रकार दे मक्खी मच्छर है ना जी, जिजू कंडू, ये सारे हांजो तो हांजो जेड़ा सा अपने घरे दा आले दुआले जेड़ा सा दिखने को मिलदे।
1: हाँ जी
0: कन्नै दिखा जी, हुण जिहड़ा सा अग्गें बरसात दा मौसम भी आउणा है ना जी,
1: हाँ जी
0: तां इहदे विच इस मौसमे विच

0: अच्छा, तो जेहड़े तुसां दे ये जेहड़े बीज होंदे, कौन बीज बांदे तुसां अपने घरे दे, बीज है ना ये?
1: देसी देसी बी बनते जी, देसी कन्नै कुछ आत्मा प्रोजेक्ट आले दिंदे अहां सहलांदे देसी बी।
0: प्रदर्शनी प्लॉट जेहड़े लगदे हैं ना, ये
1: हाँ जी
0: छलियां कौन बाहियां तुसां, चिटियां की लाल?
1: लाल।
0: एक देसी बीज लाल भी होंदा ना छलियां दा?
1: हाँ जी हाँ जी, बस तीसरे लांदे। हाँ
0: अच्छा, अपना घरे का बीज रखिए तो हाँ लिए
1: हाँ
0: ना।
1: जी हाँ
0: दिखा
1: जी
0: बड़ी अच्छी गल है। दिखा अहां जो जड़े से अपने जड़े पुराने जड़े बीज हैं ना, जियां कोई सब्जियां
1: हाँ
0: भिंडियां दे
1: जी
0: होई है, या
1: हाँ जी
0: धान
1: हाँ जी
0: धाना दे पुराने दे पुराने बीज है, कन्नै जियां कोई कणका दा बीज है, इससे
1: हाँ
0: सोगी
1: जी
0: जियां तो हाँ
1: हाँ
0: छलियां
1: जी
0: दा बीज भी अपना रखिया ना। अच्छा
1: कन्नै
0: छलियां,
1: बांदे बैला ने
0: अच्छा बैल भी रखे अल्ली।
1: जी, बैला ने बांदे। हाँ
0: दिखा भी ये भी एक बड़ी अच्छी गल है कि तो हाँ अल्ली भी जड़ा सा बैल ना खेती करा कर दे, लेकिन अहाँ अगर अहाँ दिखते हैं तो दिखा बैल तां तू जड़े सा घुमा कर दे, लेकिन कोई एक जमाना हा जल कि एक खरे भाए जड़ा सा दांद जल बिकी जाता है, कहना तोपने पर भी दांद नहीं मिलते
1: जी, हुण तां बिल्कुल ही नहीं मिलना दे, हुण
0: हे
1: तां है वारे बड़े भारी चढ़े।
0: ते दांद तो हाँ अपने घर दे पाले है कि मुल्ले खरीदे
1: नहीं, अपने पाले सर।
0: है ना। देखा
1: हाँ
0: भाई
1: जी
0: अहाँ दे जिले कांगड़े दी अगर अहाँ गल करन तो इत्थू दिखा कितनिया बैलाइयां मंडियां लगदियां जल्द सीजन
1: हाँ
0: लगदा
1: जी हाँ
0: हड़वाई
1: जी
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: जी
0: इतने सारे व्यापारी जड़े से आंदे हे। तो जियां हुण बरसाती वाली जड़ियां तुहां सब्जियां कन्नै फसलां जियां बाही तियां हैं,
1: हाँ जी
0: तुहां
1: हाँ
0: कन्नै
1: जी
0: गलबात करदे ना अहाँ जियां प्राकृतिक खेती दी, कितने साल हुई ये प्राकृतिक खेती तुहां जो करदे?
1: जो प्राकृतिक खेती करते कोई 4 साल हुई है सर। हाँ
0: तो आज
1: जी
0: जो कुदू ते ये प्रेरणा मिली कि उन रसायन छड़ी के जड़ा से उन कुछ प्राकृतिक खेती की?
1: ट्रेनिंग हुई थी अहम आत्मा प्रोजेक्ट आले दी,
0: हाँ
1: सुभाष
0: जी
1: पालकर जी ने ना
0: अच्छा
1: तिथि कन्ने कन जुड़े भी साहिवाल गांधी हरियाणा थी इसे ती ते गां सिखदे सिखदे ती हिसाबे लगे करना फिर। हाँ जी
0: ता खरे इदे जेड़े रिजल्ट हैं खरे मिलते तो हाँ जो उत्पादन?
1: अच्छे अच्छे अच्छे रिजल्ट अच्छे। चलो वहां कणक तो नहीं दे पाए ना, बह
0: हाँ जी
1: कने छलियां तो दिती ही है 3 क्विंटल पिछली बारी। हाँ
0: अच्छा,
1: जी
0: दिखा इस बारी है जड़ा सा सरकार द्वारा भी कणका का जड़ा सा 60 रुपये हाँ जी
1: ₹60
0: प्रति किलो, यानी कि 6,000 रुपये क्वांटल है इस बारी है जड़े से है ना।
1: रेट। हाँ जी हाँ जी हाँ
0: दिखा
1: जी हाँ जी
0: इतने बढ़िया भा निकने, अगर दूए बहा गल करिए तो दिखा 2,200-2,300 रुपये कणक जड़ी से बिका कर दी, लेकिन जिना प्राकृतिक विधि करने लगाई यही दिखा तेरा जो
1: हाँ
0: इतने
1: जी
0: तगड़े जिसी है ना
1: तीन तीन तीन
0: भा मिल।
1: क्विंटल दिती थी ना, 18-18 हज़ार रुपया मिली है।
0: हाँ दिखा इससे और ज्यादा और के चाहिदा,
1: जी हाँ
0: कहना
1: जी
0: इससे भी जड़ा से अहाँ दे अखे बखे जड़े अहाँ तो हाँ जो सोना करते हैं ना ये दिना ये दिखियो कणक बिकदी, तेने भी
1: हाँ
0: जड़ी से
1: जी
0: प्रेरणा जड़ी से हुन मिलनी है कि नहीं अहाँ भी जड़ा से
1: हाँ
0: यो
1: जी हाँ
0: दिया
1: जी
0: अनाज
1: हाँ
0: उगान
1: जी
0: है ना। तो तुहां दे
1: हाँ
0: उतु
1: जी
0: जड़ा थुरल जड़ा इलाका थुरल पालमपुर बिच उतु तुहां दे इलाके बिच सिंचाई कियां हुंदी जमीना दी पानी के तो?
1: सिंचाई वर्षा वर्षा पर निर्भर है सर।
0: अच्छा, और पानी का कोई ये नहीं है ना
1: नहीं, पानी का कोई सोर्स नहीं है।
0: जी, अपनी जमीन बिच भी कोई खड्डे वगैरह बनाए होंगे पानी बरसाती दे रुकने?
1: टैंक टूंक छोटे बनाए जिन्हें हरियाली परियोजना दे बने थे, चाहे तीच पानी होंगे जिन्हें वर्षा तभी चलो ती दे है सिंचाई थल्ले हुई अंदर साफ थी दा
0: अच्छा
1: चक
0: अच्छा
1: डैम वगैरह बने वाटर शेड दे थोड़ी हरियाली रहती।
0: अच्छा जी तो दसिया बैल रखे हो, बैला सोगी और पशु भी रखे होने?
1: गा रखी साहिवाल।
0: अच्छा साहिवाल दूध दूध दिंदी है?
1: हाँ जी सूझो,
0: किन्ना दूध हो जाता?
1: 10 किलो कड्डे पहली 100 सूझो ना।
0: अच्छा, तो जी 10 किलो दूध है, इधर दूध भी बेची दे बांध लगाइए क्या कर दे?
1: जिन्हें कोई लेने वाला हुआ है ना तो हमने ज्यादा कितनी कितना मैं ही पाल देना,
0: हाँ जी
1: कहने इस दूध 100 रुपये तो घट देंगे नहीं,
0: अच्छा
1: तो फिर लेंदे थोड़ा घट वी आपू अहा यूज कर लेंदे,
0: अच्छा
1: फिर हो
0: हाँ
1: गया बेची लेंदे 1500 रुपये लीटर।
0: अच्छा, यानी कि जड़ साहिवाल का जड़ा घ्यो है
1: हाँ
0: देसी घ्यो
1: जी
0: से 1,500 रुपये किलो है ना?
1: हाँ जी
0: अच्छा बिकी अंदा वे है ना?
1: बोलने मतलब जी ना ओले ओले ऐसा दे चूरी है तो पता है कि कोई बीमारी है तो नहीं है,
0: हाँ
1: ले
0: जी
1: लेंदे ना।
0: हाँ अच्छा, इससे सोगी जी हाँ जो सुनने वाले भी ये दसा कि जड़े तो हाँ दसिया कि साहिवाल जल्द गा तो हाँ आंदी है जल्द हाँ प्राकृतिक खेती शुरू की है,
1: हाँ जी
0: इस गाय खरीदने वास्ते भी तो हाँ जो कोई अनुदान वगैरह मिलला विभाग?
1: चाहे 25,000 रुपया मिला सर
0: अच्छा करे
1: सब्सिडी,
0: आई कितने दी ही ये गाग ने?
1: ये आई 65,000 दी।
0: अच्छा यानी कि 25,000 तो हाँ जो सरकार द्वारा मिली है ना?
1: हाँ कहना थी आई देख रेख वास्ते 10,000 रुपया नाम मिला था, वेटनरी आले ते मिला है नाम।
0: तो कुशल जी इससे सोगी जी हाँ तो हाँ अपनी जमीना बिच कुछ जी हाँ बागवानी वगैरह भी कुछ पौधे
1: जी
0: लगाए हो?
1: हाँ लीची के अंब लाए हुए हैं सर।
0: अच्छा, किन्ने किन्ने बड़े पौधे होए ये?
1: बूटे है ना अंबे दे कोई 30 करी ना,
0: हाँ जी,
1: कने लीचियां दे है ना कोई 5-7, 5-4 सेबां दे लायो।
0: यानी कि फल जड़े से अपने घरे गुजारा तो करी होंगे, थोड़े बहुत
1: हाँ
0: बेची भी।
1: जी, आज जनाब बेची भी लेंदे, कोई लीने वाला होना तो बिकी भी आंदे।
0: हाँ, या अपने रिश्तेदार आए हैं या सगे संबंधी हैं, ग्राएं बिच तो दिखा ये मेल भाव होंदा ही है कि अगर
1: हाँ
0: हाँ बार
1: जी हाँ
0: कुछ
1: जी हाँ जी हाँ
0: ऐसे ही
1: जी हाँ
0: कोई
1: जी
0: अगर कोई फल सब्जी लगी हो तो बंडने की जड़ी से एक परंपरा ग्राएं बिच।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हुण गोभी ही बाजो, चलो ज्यादा तो नहीं होंगी, पलमा सा ये, पर वे अपने गुजारा ठीक ने, बेची भी लई 5-10-20 किलो,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: 50 रुपये किलो।
0: अच्छा अच्छा तो जियाँ तुह प्राकृतिक विधि कन्नै खेती करते हैं तो जल्द जियाँ इस च कोई ऐसा दिखा कोई बीमारियां कीट तो आई जाते कोई भी, अगर हाँ जो भी बीमारियां
1: हाँ
0: लगी जाए
1: जी
0: फसलों
1: हाँ
0: जो
1: जी
0: भी,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: प्राकृतिक विधि से कौन कौन ऐसे घटक तो हाँ बनाते हैं जिससे जियाँ कीड़े मकोड़े भगाने वा।
1: हाँ जी ना, जीवामृत दिंदे पहले, जीवामृत
0: हाँ जी,
1: तो देना देना 21 दिन बाद, फिर
0: हाँ जी,
1: जिया अग्नि अस्त्र हुई या ब्रह्म अस्त्र हुई या, हाँ जी, फिर 10 परनी हुई, जिन्हें बड़ा कीड़ा लगी आ तो दे दवाई छिड़क दे ही ना,
0: जी
1: छिड़काव
0: जी
1: कर दे सर,
0: हाँ जी,
1: ये दापी बनाते हाँ गोल कने
0: इससे क्या पूरे जी कीड़े मकोड़े जी बीमारियां से दूर हो जाने
1: पै नहीं
0: फसलें?
1: लगते,
0: हाँ जी,
1: पहले जिन्हें अग्नि अस्त्र वगैरह देना तो पीते भी, जिन्हें सब्जियां बंद तोंदियां कीड़े
0: हाँ जी,
1: लगा दे, अजकल तो शायद थोड़ा कंट्रोल रहा,
0: हाँ जी।
1: कने सब्जियां खाने का मजा कुछ और है ना।
0: अच्छा
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: यहाँ प्राकृतिक विधि कहना चलो तो हाँ कोई भी अनाज तैयार करते हैं जी, तो हाँ सब्जी बेचनी है ता उदे भा तुन जोसे उदे मिली जन्दे?
1: हाँ जी हाँ जी, जिन्हें ले लेंदे कई, जिन्हें पता नहीं सथ्यूरिया का
0: हाँ
1: ले लेंदे सर। हाँ जी, हूँ गोभी है रेट बाजारे च 70-80 है, तो चलो हाँ 50 रुपये देती
0: हाँ जी,
1: जी।
0: कहना
1: हाँ जी
0: देखा अगर हाँ जो एक जी तो हाँ बोलते हैं ना कि जेड़े समझते हैं जी जो पता है कि प्राकृतिक चीज क्या है
1: हाँ जी हाँ
0: सह
1: जी
0: दूई गल ही नहीं करते सह सीधे तेना जो बस समान जड़ सह मिलना चाहिए। इससे सोगी जी तो हाँ गलबात की जी तो हाँ दस्या कि घर माल बच्छू भी रखे कोई बकरियां
1: हाँ
0: वगैरह नहीं
1: जी,
0: पाली मुर्गियां देसी मुर्गियां
1: पाली
0: भी?
1: हैं बकरियां भी, 2-3 बकरियां हैं
0: अच्छा, कौन नस्ल है बकरियां दी?
1: ये अपनी है देसी नस्ली,
0: दो तीन दिन ज्यादा नहीं पालियां?
1: ज्यादा नहीं होना, अजकल बच्चे पढ़ा देता फिर ही मेन चक्कर साहब दिखने का पौंदा।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ सहत है।
1: हाँ
0: कहाँ दिखा
1: जी
0: बकरी का दूध भी दिखा उसकी बड़ी भरी जड़ी से मांग है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: हाँ ता
1: कुछ सेल घटी आंदे तो बकरी दूध बड़ा यूज लेंदे लोग।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
1: हाँ जी
0: कहने दिखा ये तो हाँ ते ग्राएं बीच तो फिर भी ये सारियां जिया कुछ आगे दूध है दही पनीर है
1: हाँ जी
0: ये
1: हाँ
0: मिली
1: जी
0: भी आंदा का दिखा जिया कोई कोई तो जिया अगर हाँ दूर शहर बाजारा की गल करना तेना जो ये सारा समान लेने जिया ग्राएं बीच आना पौंदा। कुशल जी अहाँ की जी बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना था दिखा नौकरियों पिछे तां तू घूमा करते न ये बावजूद इन्हों वाल अपनी दिखा खरिया खुलियां जमीन भी जड़ियाँ स उस नौजवान युवा पीढ़ी जो तो हाँ क्या संदेश देना चाहेंगे कि सह भी?
1: थोड़ा दे यहाँ
0: हाँ
1: दी
0: जी,
1: सरकार पर मंथन करे ना, तो हम दे युवा वर्ग जैसे से हटी होने वापस, जिन्हें सब्सिडी वगैरह दे दे, खेत आम तो दे, RD का राशन मिला, डिपुआ दे बंद हुई है ना,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: सारे कमाना सर ही ना, क्योंकि सारे निठल्ले हुई है ना, कमाई राजी नहीं।
0: हाँ
1: युवा
0: जी,
1: पीढ़ी बीच जिन्हें हूं देखा 60 रुपये कणक बिकी, तो इस बात से जरा की हटी हुआ युवा भी, तो थोड़ा ना गांव तिगांव दुगनी आए जे सरकार बोल रही, तो यही है इन्हों का लक्ष्य। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ
1: जी, क्योंकि ज्यादा कितना खेत जे खिले पी इस वक्त, खिले
0: हाँ जी, हाँ का देखा दिनों दिन जड़े से खेत खिले पवा दे
1: खिले खिले, हर बंदा शहरे पिछे चले, शहरे पिछे शहरे पिछे। हाँ जी
0: जितनी दिखा खेती बिच नवी नवी तकनीक का नए नए बीज
1: हाँ जी
0: कृषि
1: हाँ जी,
0: उपकरण होवा दे उतनी हर साल खेती जड़ी से घटा कर दी है।
1: घटा दी सर।
0: हाँ तो दिखा
1: हाँ
0: ता
1: जी, सियाने बुजुर्ग गए पहले दूर दूर भाई हुंदे खेती बाड़ी आ,
0: हाँ जी,
1: ते तू रुके रहंदा ये जानवर,
0: हाँ जी, हाँ जी, जी
1: हुण घरे नेड़े बाद दे 4-10 माणू एक पट्टी बाद देता है घरे होना ते जानवर भी।
0: जी हाँ जी, कुल मिलाई के यहाँ ये बोल सकते ना कि कोशिश जड़े से सारे करा
1: हाँ
0: अपने
1: जी
0: घरें अपने माँ प्यो जो भी जड़ा सा थोड़ा आते ना जो सहारा दिया कि
1: हाँ जी
0: जमीन
1: हाँ
0: जड़ी से
1: जी
0: खिली नहीं छड़नी है ना अहाँ भी सहयोग जड़ा से पूरा करके बाने कमाने
1: हाँ
0: च।
1: जी
0: जी कुशल जी
1: हाँ जी
0: तुहाँ अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव अहाँ कन्ने साझा किते अपना
1: हाँ जी
0: कीमती समय तुहाँ अहाँ जो दिता तुहाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जानकारी चुनी ताई दिखा
2: बड़ी बढ़िया सी
3: बड़ी बढ़िया जानकारी ही कने आशा कर दे के हड़े जड़ा भी स्रोता ने इसे सुनी के कुछ ना कुछ सीखा ही होना देना
2: फायदे, जी। बड़े फायदे ले
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल कने हुण गल जड़ा करनी आ हाँ अगली जानकारी दा अगली जानकारी है सांझे लो मौसम संबंधी जानकारी चुनी ताई दसा अज दा मौसम दा हाल क्या
2: मौसम बारे गल करिए तो हुण प्रदेश दे प्रमुख शहरां दे अधिकतम कने न्यूनतम तापमान दी सह इयां रहा चंबा दा अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री सैल्सियस न्यूनतम रहा 15 डिग्री सैल्सियस कांगड़ा का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सैल्सियस न्यूनतम रहा 21 डिग्री सैल्सियस ऊना का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सैल्सियस न्यूनतम रहा 22 डिग्री सैल्सियस मंडी का अधिकतम तापमान रहा 27 डिग्री सैल्सियस न्यूनतम रहा 17 डिग्री सैल्सियस नाहन का अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सैल्सियस न्यूनतम रहा 18 डिग्री सैल्सियस कने कुल्लू का अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सैल्सियस न्यूनतम रहा 10 डिग्री सैल्सियस
3: जी कने इदे सोगी मौसम विशेषज्ञ अनुसार आने वाले 2-3 दिन जड़ा सा मौसम देदा ही दिखने मिलना है यानी कि गर्मी तो होनी है पर गर्मी कने थोड़ा बचाव भी सांझो महसूस होना क्योंकि बदल भी सोगी सोगी सांझो हर जगह दिखने मिलने कने इस ते बाद एक बारी फिरी ते चलना हाँ एक लोक गीत दी तरफ सारे मिली के सुनना है लोक गीत।

0: जी चुनीताई, सुनिया हाँ लोक गीत कने। लोक गीत ते बाद एक बारी फिरी ते गल करनी अहाँ अपने खेत खलिहान
1: दी।
0: दी, है
1: हाँ
0: ना
1: जी,
0: जी।
1: जी
0: जिन्हें गल्ला करने वास्ती अहाँ टियाले पर बैठे हो
1: बैठे हो।
0: ना जी,
1: हाँ जी
0: ता अजकल अहाँ यही बोलना चाहेंगे कि जियाँ हड़िया किसान साथियाँ जेड़ा भी इस वक्त सब्जियां
1: पनीर की
0: लगाइयाँ,
1: बाई
0: है
1: हो।
0: ना जी,
1: हाँ
0: इस वक्त चाहे सै करेले न, डानिए न, खीरे न, किसी भी
1: बैंगन है,
0: प्रकार
1: कुछ
0: दे, है ना
1: भी,
0: जी, जो भी
1: टमाटर है।
0: फसलां
1: हाँ
0: तिना लगाइयाँ, भाई ऐसा कम करना है कि तिना पर ज़्यादा रसायना का प्रयोग ना
1: नहीं
0: करना,
1: करना।
0: है ना
1: हाँ
0: जी,
1: जैविक
0: क्योंकि
1: है।
0: दिखा जी जालू भी इन्हें फसलों पर रसायना का प्रयोग होंदा तां कुथी ना कुथी जेड़ा सा अग्गे जाए के एक तो पर्यावरण जो भी नुकसान पहुँचाते,
1: खाने
0: कने
1: वाले
0: इस दे
1: भी
0: सोगी सोगी जालू अहां तो हाँ जालू ये चीज़ा खानियां तो कई प्रकार स्वास्थ्य समस्याएं भी सांझो तो आंझो जड़ा
1: दिखने
0: होनियाँ,
1: होंगे।
0: तां उन्हां भाई भैणां ते अहां यही आशा करते कने तिन्हां ने यही गुजारिश करते कि घट ते घट तो हाँ रसायना का छिड़काव इन्हां उपर करना, कने
1: जैविक खेती
0: कई
1: जो अपना
0: हाँ कने कई साथी हड़े ऐसे भी होंदे जड़ा चलो जी अजकल तो वैसे सारे जागरूक हो कने इन्हां चीज़ों का प्रयोग घट हो पर फिर भी कुछ एक
1: कर लगते हैं।
0: है ना जी साथी है ना जेड़ा कि कई प्रकार के ऐसे टीके चली पे हो चुन्नी ताई
1: हाँ
0: अजकल
1: हाँ
0: जेड़ा बेला ही लगाई जाते हैं ना
1: हाँ
0: जी,
1: जी हाँ जी
0: कने फसलां जेड़ा सै दिन दुगनी सै बोलते रात चौगनी बड़ियां हो
1: बढ़ोतरी।
0: जाने है ना
1: हाँ
0: जी,
1: हाँ बढ़ोतरी होंगी।
0: पर दिखा जी तिना फसलों का भी पता लगी जाता जालू अहाँ तिने हो अगर अज लेइए संझा दे लेइए कने तिने फ्रिजे च रखी दिया या कि भी रखी दिया तो भ्यागा तिना का सै आकार जेड़ा सै बढ़ी जाता कने हाथ लगा तो इं लगता कि जिन्ना चे पानी है भरोया है ना
1: हाँ
0: जी,
1: जी हाँ जी
0: तो यह दिखा जी चोरी तो सारिया जगह पकड़ो ही आती है ना जी किसी
1: हाँ
0: भी
1: जी
0: प्रकार की, तो अहाँ यही गुजारिश करना चाहेंगे उन्होंने साथियों से कि भाई दे कम नहीं करने, क्योंकि ऐसा कम करी के तो हाँ मानवता दे शत्रु बना दे है ना जी,
1: कने
0: मानव दे
1: बीमार
0: शत्रु
1: हो
0: बना
1: आदे,
0: दे,
1: बीमार हो,
0: कने
1: बीमार
0: बीमार होवा दे, कने कई प्रकार दी स्वास्थ्य समस्याएं पर्यावरण समस्याएं लेके जड़ा सा तो हाँ आवा दे, तो भाई दे कम ते रुकना है, कने इन्हें गल्ला बातों सोगी कार्यक्रम का समय इतों ही खत्म हो करदा, हुण सांझो दुनी जो दिया इजाजत,
1: अच्छा
0: अच्छा
1: जी,
0: जी
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही पलों में हम आपको आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:45 पर। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: ये आकाशवाणी शिमला है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी के धर्मशाला हमीरपुर केंद्र के साथ ही एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप डीटीएच सेवा पर भी सुन सकते हैं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालतों में राज्य में आपसी सहमति से हुआ 65,000 से अधिक मामलों का निपटारा। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्षमता निर्माण सुदृढ़ीकरण के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि आपदा का विस्तृत अध्ययन, खतरा आकलन और तकनीकी मूल्यांकन से जुड़ी सभी राज्य स्तरीय अनुसंधान व विकास गतिविधियां विश्वविद्यालय के इसी केंद्र के माध्यम से संचालित की जाएंगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि कोई भी विकास की मुख्य धारा से वंचित न रहे। वे आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को नई दिशा देने और सामाजिक संवाद को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं कल 10 मई से दोबारा बहाल होने जा रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी सोमवार 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य पंचायतों को स्थानीय शासन, सेवा वितरण में सुधार करने और

0: सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से सतत विकास की दिशा में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है और कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया करने का काम किया है। मंडी में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है। सोदान सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर आम जनता के साथ धोखा किया है। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस जिन झूठी गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी, वही गारंटियां आज जनता के दिलों में पीड़ा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनरों सहित हर वर्ग कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान है। प्रदेश में शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन नगर निगम के तहत गंज बाजार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 3.5 वर्ष की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है और इन चुनावों में सरकार की नाकामी ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
1: नगर निगम के चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उनके लिए मुद्दों की कमी नहीं है क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है। और सीधी बात है इसमें कि प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष की जो असफलताएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो अपने आप में मुद्दा है। शहर में मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और झूठ बोल करके कॉरपोरेशन में भी आई।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश सहित प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तरीकों से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में राज्य की सभी अदालतों में लोक अदालतें लगाई गईं। इन अदालतों में 140 बेंचों के समक्ष 1,10,260 मामले लाए गए, जिनमें से 65,793 मामलों का निपटारा किया गया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महासु आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कला प्रदर्शनी आज शुरू हुई। 14 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने कैनवस पर रंगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक मुद्दों को उकेरा है, जो सराहनीय है। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के अपनी ही सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वे इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगी।
2: कमला नेहरू हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया था कि जो विमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, उसकी केयर करनी है और आज भी इसी के लिए जाना जाता है। जब कोई महिला आती है प्रसूता होनी है, उसने बच्चे को जन्म देना है, तो उसको रेफर किया जाता है कि आप कमला नेहरू हॉस्पिटल जाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन कहीं और तब्दील होगा तो स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी, तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज है वो सरकार से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेगा सबको मान्य होगा।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम कल 10 मई को घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज सचिव सी पाल रासू ने पंचायत चुनाव के चलते आज पालमपुर में स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल से जुड़े सभी निर्वाचन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई दिशा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से शिमला में 2 दिवसीय मंथन मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तकनीक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से MSME क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस आयोजन में देश भर से छोटे उद्यमी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। MSME व स्टार्टअप्स कमेटी के चेयरमैन ज्ञानचंद मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें।

0: सरकार की जो योजनाएं हैं उनको एमएसएमई को बताना, क्या ग्रांट्स हैं, क्या सब्सिडी हैं, कैसे लोन पा सकते हैं, कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कंप्लायंस कैसे करना है, सरकार की जो विभिन्न पॉलिसीज हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, इन सब चीजों को लेकर के वो डीएफओ ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं एमएसएमईज के लिए अपने क्षेत्रों में। सो पूरे देश के 55 डीएफओ यहाँ पर मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किए हैं जो आपके यहाँ होटल में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
1: भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पार्टी कार्यालय के अनुसार धर्मशाला नगर निगम में 5 जबकि नाहन नगर परिषद में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 1 उम्मीदवार की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया गया है। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम के प्रभारी हरिकृष्ण हेमराल ने आज अन्य सदस्यों के साथ कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वॉर रूम का मुख्य कार्य फील्ड में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित अपडेट करना, दैनिक आधार पर चुनाव प्रचार से जुड़ी रिपोर्ट लेना और पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उन तक पहुंचाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालतों में राज्य में आपसी सहमति से हुआ 65,000 से अधिक मामलों का निपटारा और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
4: वो दो सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ ही एफएम शिमला पर भी एक साथ रिले किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से अभी आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा की।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। रात के 8 बजे हैं, अब लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस गीत के साथ, पंजाबी गीत है ये और आवाज इसे दी है हंसराज हंस ने।

0: हंसराज हंस की आवाज में अभी आपने ये पंजाबी गीत सुना। कार्यक्रम सब्र से समय आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, अब एक खास सूचना। आकाशवाणी धर्मशाला इस मदर्स डे के अवसर पर लेके आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम, माँ मेरे दिल की आवाज। क्या आप अपनी माँ के लिए कोई विशेष संदेश, शुभकामना या प्यार भरा समर्पण भेजना चाहते हैं तो अपने दिल की बात हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। ये कार्यक्रम आप कल 10 मई को सुबह 8:30 से 9 बजे तक सुन सकते हैं, और जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं वो नंबर है 9914172223, यानी 9914172223। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9914172223। इस नंबर पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं। आपका संदेश इस विशेष कार्यक्रम में प्रसारित किया जा सकता है ताकि आपकी आवाज पहुंचे आपकी माँ तक प्यार सम्मान और कृतज्ञता के साथ। तो देर किस बात की है, इस मदर्स डे अपनी माँ को बताइए कि वे आपके लिए कितनी खास हैं। आकाशवाणी धर्मशाला, आपकी भावनाओं की अपनी आवाज।
1: मैं कैसे कहूं
0: सबरस कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। अगली पेशकश ये गजल जगजीत सिंह की गाई।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में आप शामिल कर रहे हैं साबरी ब्रदर्स की गाई ये कव्वाली।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। अब श्रोताओं, एक खास सूचना एक बार फिर। आकाशवाणी धर्मशाला इस मदर्स डे के अवसर पर लेके आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम, माँ मेरे दिल की आवाज। क्या आप अपनी माँ के लिए कोई संदेश, शुभकामना या प्यार भरा समर्पण भेजना चाहते हैं तो अपने दिल की बात हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। कार्यक्रम आप कल 10 तारीख को सुन सकते हैं सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक। और मैसेज भेजने के लिए नंबर रहेगा व्हाट्सएप 9914172223। नंबर है 9914172223। इस नंबर पर आप संदेश भेजें, आपका संदेश इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जा सकता है ताकि आपकी आवाज पहुंचे आपकी माँ तक प्यार सम्मान और कृतज्ञता के साथ। तो देर किस बात की, इस मदर्स डे अपनी माँ को बताइए कि वे आपके लिए कितनी खास हैं। आकाशवाणी धर्मशाला, आपकी भावनाओं की अपनी आवाज। सबरस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जिसे आवाजें दी हैं अलका याग्निक और हरिहरन ने।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात के 8:30 हुए हैं, अब सुनिए देशगान।

देशगान आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, अब एक विशेष सूचना। आकाशवाणी धर्मशाला इस मदर्स डे के अवसर पर लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम, माँ मेरे दिल की आवाज। क्या आप अपनी माँ के लिए कोई विशेष संदेश, शुभकामना या प्यार भरा समर्पण भेजना चाहते हैं तो अपने दिल की बात हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल यानी 10 मई को रविवार को सुबह 8:30 से 9 बजे तक। और जिस नंबर पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप के माध्यम से, वो नंबर है 9914172223 यानी 9914172223। 9914172223 ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। आपका संदेश इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जा सकता है ताकि आपकी आवाज़ पहुंचे अपनी माँ तक प्यार, सम्मान और कृतज्ञता के साथ। तो देर किस बात की, इस मदर्स डे अपनी माँ को बताइए कि वे आपके लिए कितनी खास हैं। आकाशवाणी धर्मशाला, आपकी भावनाओं की अपनी आवाज़। देशगान आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। ये लीजिए, सुनिए कार्यक्रम में अब इस देशगान को।

देश गान अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं। समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ @9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों
1: और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल R.N. रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस,

0: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल

0: एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहाँ 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहाँ प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया।

0: हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे कार्यक्रम हिमदर्शन।
1: शानदार नया शोरूम अब विवांता मॉल सोलन में। ज्वेलरी शॉपिंग का खूबसूरत एक्सपीरियंस ले और पाए 0% मेकिंग चार्जेस का फायदा। कल्याण ज्वेलर्स।
2: रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं समाचार एकांश से प्राप्त हिमदर्शन प्रादेशिक न्यूज रील।
3: श्रोताओं नमस्कार, साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 3 दिन 26, 28 और 30 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित, अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों ने अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का किया प्रदर्शन। और राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का किया आह्वान। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 7 मई से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्रों की जांच 12 मई को होगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव होगा। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे। इस बीच प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले 4 नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को CBSE पाठ्यक्रम के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिमला में उन्होंने कहा कि तय मानकों के मुताबिक 100 शिक्षण संस्थानों में अभी भी विद्यार्थियों की संख्या ना के बराबर है और ऐसे शिक्षण संस्थानों को बंद करने पर सरकार विचार करेगी। शिक्षा मंत्री ने 12वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों के बच्चों के बेहतर प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई।
4: हमने कुल 30-35 स्कूल जहाँ पर 0 इनरोलमेंट थी, वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद किए हैं। बाकी अभी जो हमने मानक शुरू में बनाए थे 2023 के आसपास जो मानक बने थे लेस देन 5 वाले, उसके बारे में विभाग ने जो फाइल है वो मुख्यमंत्री जी के पास भेजी है, तो शीघ्र उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और उसमें भी लगभग कोई 100 के आसपास स्कूल ऐसे स्कूल और आते हैं जिनको एक तरह से डाउनग्रेड या मर्ज किया जाएगा विद इन डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स।
3: रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हो रही बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बारिश व ओलावृष्टि से सेब की फसल को ही शुरुआती आंकलन के मुताबिक 40% नुकसान हो चुका है। रोहित ठाकुर ने कहा कि मौसम में आए इस बदलाव से सेब ही नहीं बल्कि अन्य फलों और फसलों को भी नुकसान हुआ है।
4: मौसमी वर्षा हो रही है, काफी अनसीजनल रेनफॉल हुई है और निश्चित रूप का इसका नुकसान हमारी कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी हुई है। चाहे हम ओलावृष्टि की बात करें, इस वर्ष ओवरऑल रिपोर्ट आ रही है वो मात्र कुछ हाई क्षेत्र में संतोषजनक क्रॉप है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ये ओलावृष्टि की जद में आ रही है, तो इसका काफी नुकसान कृषि और बागवानी क्षेत्र का हो रहा है। अन्य जो हमारी फसलें होती है उसकी भी क्षति हो रही है।
3: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य सचिवालय शिमला में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीयकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले लगभग 30 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते थे और अब ये संख्या बढ़कर 94 करोड़ हो गई है।
5: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
3: केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में वाणिज्यिक आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं है।
6: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
3: भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अद्भुत शौर्य और साहस के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर को एक वर्ष पूरा हो गया है। इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय से नगर निगम शिमला के कचरा संग्रहण के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के साथ नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है, जिसने चरणबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और हिमाचल को देश का एक हरित राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर इससे नगर निगम का खर्च भी कम होगा।
7: शिमला नगर निगम पहली नगर निगम है जहाँ पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल, आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल, और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहाँ प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके, हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे बढ़े।
3: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। राज्यपाल मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का उनका आदर्श आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के समय था। कविंद्र गुप्ता ने छात्रों से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने, नशा मुक्त जीवन अपनाने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने का आग्रह भी किया। इस बीच राज्यपाल ने हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के वार्षिक समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल

0: नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन की सोलन इकाई ने राज्य सरकार पर पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। एचआरटीसी पेंशनर संगठन की सोलन इकाई के महासचिव जगदीश ठाकुर ने बताया कि उन्हें ना तो समय पर पेंशन मिल रही है, ना ही चिकित्सा बिलों का भुगतान हो रहा है और ना ही उनके लंबित भत्ते मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एचआरटीसी पेंशनरों की मांगों को अनसुना कर रही है।
1: हमारे साथ जो सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, हमें काफी लंबे समय से जो है पेंशन समय पर जारी नहीं की जा रही है, और अभी हाल ही में हमारे को जो मार्च की पेंशन थी वो 2 मई को जारी की गई। इसी प्रकार जो है हर महीने सरकार का हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है, और हमें किसी भी प्रकार के ड्यूज से जो वंचित रखा गया है। ना हमें 2016 के स्केल का एरियर, मेडिकल बिलों का भुगतान और 3% डीए जो कि सभी विभाग के कर्मचारी और हमारे एचआरटीसी के कार्यरत कर्मचारियों को मिल चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे 8500 के लगभग जो पेंशन है उनको 3% डीए भी अभी तक जारी नहीं किया गया है।
0: लाहौल स्पीति की नवगठित ग्राम पंचायत मालंग में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से पंचायत का गठन करते हुए सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव किया। पंचायत के पांचों वार्डों में भी बिना चुनाव के ही सभी सदस्य चुने गए। वहीं सिरमौर जिले में गिरिपार क्षेत्र की टटियाना पंचायत में लगातार दूसरी बार सभी जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इस पंचायत में प्रधान पद के लिए पूनम शर्मा, उप प्रधान पद के लिए दाताराम शर्मा, बीडीसी सदस्य के लिए प्रियंका शर्मा के नाम पर सहमति बनी है। सर्वसम्मति से उप प्रधान चुने गए दाताराम शर्मा ने बताया कि सभी पदाधिकारी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पंचायत के विकास को नई गति देने की कोशिश की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल ने बेहतरीन कार्य किया है। शिमला में उन्होंने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का सर्वे किया है, जिसमें हिमाचल को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए चयनित किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हिमाचल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि में गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए 46 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है, जबकि PMGSY चरण 4 के तहत 250 बस्तियों को जोड़ने के लिए 2247 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।
2: मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने अलग अलग मापदंडों के तहत एक सर्वे किया, अलग अलग राज्यों का अलग अलग मापदंडों के ऊपर परफॉर्मेंस डेंसिटी ऑफ रोड हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर, उसमें हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से काम सन 2000 से लेकर आज तक और खास करके PMGSY 3 में जो कार्य प्रदेश के अंदर एक तीव्र गति से हुए हैं, उसके फलस्वरूप ये निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है इसके लिए उन्होंने चयनित किया है।
0: इसी के साथ हिमदर्शन का यह अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप अगला प्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जिसमें 9:30 पर कार्यक्रम संस्कृति भारती, 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और सभा के अंत में 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुन पाएंगे।

भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले। लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। आवाज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें, आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने एफएम्स हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा, यदि हम भी वही सब करने लगे तो। मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खांटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
0: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसिल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
3: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
5: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाया है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
6: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई, गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी, और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
2: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
3: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
2: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
3: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।
0: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
7: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से

0: अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है, मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना दीपस होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, इससे कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B में एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे अपने शेखावटी की हवेलियाँ मैंने बनाई है, इससे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश होती है।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादरगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
2: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
4: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
6: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से लेह में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
5: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
4: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
5: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
4: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
7: भारत में और भारतीय वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
4: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
5: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
4: और मैं नेत्रा।
8: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी है। आज

0: साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: Aapke saath tabla par sangat kar rahe hain Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar apne karyakram ka aarambh raag जन सम्मोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santoor recital with rag Jan Sammohini, presenting आलाप जोड़ एंड झाला। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू रूपक ताल and Madhya Lay. Drut composition is set to Teen Taal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिल्ली

0: और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए